0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व न करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाई बोनो, आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होपे एनीमिया तक की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छांव में आपने रह या आपने ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपने हाल रह ये भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा दूंगा, मैं अपनी धरती में जीवन दान लूंगा। होवे प्रकृति ने बचाओ, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल में बदलाव की शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वह जीवन को जीने की दिशा भी दिखाता है। जी हाँ, शिक्षा वह प्रकाश है जो इंसान के भीतर ज्ञान के साथ साथ विवेक और संस्कार भी जगाती है।

0: श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को एक नए महापुरुषों के जीवन के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के

0: बिल्कुल जागृति जी, यह दिन केवल एक महान शिक्षक को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाले हर गुरु, शिक्षक और मार्गदर्शक के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है।
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर राधा कृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण है श्रोता साथियों कि साधारण परिस्थितियों से निकल कर भी व्यक्ति अपनी शिक्षा, प्रतिभा, मेहनत के बल पर देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। बात करें उनके प्रारंभिक जीवन की तो श्रोता साथियों, उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था।
1: जी हाँ।
0: सीमित संसाधनों के बावजूद उनके भीतर शिक्षा प्राप्त करने की गहरी इच्छा थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और आगे बढ़ते हुए दर्शन शास्त्र को अपना प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बनाया। उनके जीवन में सबसे पहली सीख यही मिली उन्हें जागृति जी कि संसाधनों की कमी किसी व्यक्ति की प्रतिभा को रोक नहीं सकती, यदि उसके भीतर सीखने की इच्छा, मेहनत करने का साहस हो। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों का अध्ययन किया।
1: बिल्कुल।
0: और दोनों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास किया।
1: जी हाँ अंजलि, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हमने जैसा कि पहले बताया था कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतन्नी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सितम्मा था। उनका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति वाला था जैसा कि आपने बताया अभी, लेकिन शिक्षा के प्रति परिवार में बहुत सम्मान था। राधाकृष्णन बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और अध्ययनशील थे। उन्हें पुस्तकों से विशेष लगाव था। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये तो हमने उनके जन्म और परिवार के बारे में बताया। अगर शिक्षा के प्रति समर्पण को लेकर हम बात करें तो साथियों, राधा कृष्णन ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और आगे चलकर इसी विषय के महान विद्वान बने, जैसा कि अंजलि आपने बताया था। उन्होंने भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों को गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं हो सकती, बल्कि ये व्यक्ति के चरित्र, विचार और व्यक्तित्व का निर्माण करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, डॉक्टर राधा कृष्णन का जीवन शिक्षा और अध्यापन से गहराई से जुड़ा रहा है। उन्होंने अलग अलग प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया।
1: बिल्कुल।
0: वे केवल श्रोता साथियों, किताबों में लिखी बातों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों को सोचने, प्रश्न पूछने और विषय को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। वह इंसान को सही और गलत में अंतर समझने, अपने विचार बनाने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने योग्य बनाती है। आज भी ये विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अध्यापन और शिक्षा के क्षेत्र में बिताया। उन्होंने कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्यापन किया। वे अपनी सरल भाषा, गहरी सोच और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। श्रोता, उनका मानना था कि शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि वो विद्यार्थियों के भविष्य का मार्गदर्शक होता है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को सोचने, प्रश्न करने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जैसा कि अभी आपने बताया था, उनके व्यक्तित्व और शिक्षा के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर उनके विद्यार्थियों और सहकर्मियों ने उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में सम्मान किया था।
0: बिल्कुल।
1: और वे विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी में विवेक हो, अनुशासन हो, मानवता हो, नैतिकता और राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हो।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, इस तरीके से कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। आज हम जान रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय को लेकर ढेर सारी बातों को, लेकिन क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में।
0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे कि किस तरीके से राधा कृष्णन का शिक्षा के रूप में योगदान रहा, वही बात करें तो जागृति जी, आज शिक्षा का स्वरूप ही बदल गया है।
1: बिल्कुल।
0: हमारे पास स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन शिक्षा का मूल उद्देश्य आज भी वही है कि ज्ञान के साथ विवेक और चरित्र का विकास। जी हाँ, डॉक्टर कृष्णन का मानना था कि शिक्षक केवल जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं, शिक्षक विद्यार्थी के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण

0: पाता है। एक शिक्षक बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान सकता है, वह बच्चे को उसकी गलतियों से सीखना सिखा सकता है और उसे अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दे सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, शिक्षक का सम्मान केवल शिक्षक दिवस के दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन किया जाना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि, शिक्षक दिवस की इस शुरुआत को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें तो श्रोताओं, डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तब उनके कुछ विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उन्होंने कहा कि अगर उनके जन्मदिन को मनाना है तो इसे शिक्षकों के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाए। इसी भावना के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, ये तो हमने आपको बताया कि शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई। यही महान दार्शनिक और लेखक के बारे में बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ दिखाई देती है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया अंजलि कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि आधुनिक विश्व को भी मानवीय मूल्य और आध्यात्मिक दृष्टि का मार्ग दिखा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: उनका लेखन भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण रहा।
0: बिल्कुल जागृति जी, डॉक्टर राधा कृष्णन का मानना था कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका बहुत जरूरी है। सड़कें, इमारतें, तकनीक देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इन सब के पीछे ऐसे शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक भी जरूरी हैं जो इन संसाधनों का सही उपयोग कर सके। एक शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों को समझता है, अपने कर्तव्यों को पहचानता है और लोकतंत्र की जिम्मेदारी से भाग लेता है। इसलिए शिक्षा केवल व्यक्ति का भविष्य नहीं बनाती बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य तैयार करती है। इसलिए श्रोता साथियों, विद्यालय की कक्षा में तैयार होने वाला विद्यार्थी ही कल के समाज और राष्ट्र का निर्माण बनता है।
1: बिल्कुल।
0: राधा कृष्णन केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, जैसा कि आपने बताया। यही बात करें भारतीय संस्कृति और मानवता का क्या संदेश है तो श्रोता साथियों, उनका चिंतन हमें बताता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं बल्कि समाज के लिए उपयोगी बनना भी है। आज जब दुनिया में तनाव, असहिष्णुता और विभाजन जैसी चुनौतियां दिखाई देती हैं, तब शिक्षा के माध्यम से सहिष्णुता, संवाद और मानवता को मजबूत करना बहुत जरूरी हो गया है।
1: जी हाँ।
0: हमें बच्चों को केवल यह नहीं सिखाना चाहिए कि प्रतियोगिता में आगे कैसे निकलना है बल्कि ये भी सिखाएं कि दूसरों का सम्मान कैसे करना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, डॉक्टर राधा कृष्णन को उनके असाधारण योगदान के लिए बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए थे। उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्रोता, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला। उनकी विद्वता और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार ने उन्हें विश्व के प्रमुख दार्शनिकों में स्थान दिलाया।
0: बिल्कुल।
1: भारत के राष्ट्रपति वो किस तरह से बने उसको लेकर हम बात करें तो 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए देश की सेवा की। उनका व्यक्तित्व राजनीति से अधिक ज्ञान, शिक्षा और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक या सैन्य क्षमता में नहीं होती बल्कि उसके चरित्रवान और शिक्षित नागरिक में होती है।
0: बिल्कुल।
1: राष्ट्रपति पद के बारे में बताएं, यही उपराष्ट्रपति के बारे में बताएं तो भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन को देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वे 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। श्रोता, उनकी विद्वता, विनम्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उन्हें देश विदेश में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ।
0: बिल्कुल जागृति जी, बात करें शिक्षक के संदेश की तो श्रोता साथियों, आज शिक्षक की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बच्चों के पास जानकारी के अनेक स्रोत हैं। इंटरनेट पर कुछ ही सेकंड में हजारों जानकारी मिल जाती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हर जानकारी सही हो जरूरी नहीं है। ऐसे समय में शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने की नहीं बल्कि बच्चों को सही जानकारी पहचानना, सवाल पूछना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना सिखाने की भी है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों के भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और कमजोर विद्यार्थियों को भी यह विश्वास दिलाता है कि मेहनत से वह आगे बढ़ सकता है। बच्चों के जीवन में माता पिता के बाद शिक्षक जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिक्षक बच्चों की प्रतिभा पहचानते हैं वह उन्हें अनुशासन सिखाते हैं, समय का महत्व समझाते हैं और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार शिक्षक का एक छोटा सा प्रोत्साहन बच्चों के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को भी अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान का अर्थ केवल शिक्षक दिवस पर उपहार देना नहीं, शिक्षक की बात ध्यान से सुनना, समय पर कार्य पूरा करना, अनुशासन में रहना और जीवन में अच्छे मूल्यों को अपनाना भी शिक्षक के प्रति सच्चा सम्मान है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन युवाओं को यही सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को सर्वोच्च महत्व दिया और लगातार सीखते रहने की प्रेरणा दी। लंबे समय तक शिक्षा, दर्शन और राष्ट्र सेवा में योगदान देने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हो गया। उनका भौतिक जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विचार और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं।
0: बिल्कुल,
1: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन ज्ञान, शिक्षा, विनम्रता और राष्ट्र सेवा का अद्भुत उदाहरण है। श्रोताओं, उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक सच्चा शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पढ़ाता नहीं बल्कि उनके जीवन को दिशा देता है। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति को विश्व के सामने सम्मान के साथ प्रस्तुत किया अंजलि, और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना।
0: बिल्कुल,
1: उनका जीवन हमें संदेश देता है कि ज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन सही ज्ञान हमें सही दिशा भी देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन एक अच्छा शिक्षक उस ज्ञान को जीवन में उतारना सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों, शिक्षक का सम्मान करें, शिक्षकों का आदर करें और हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर दें, क्योंकि शिक्षित बच्चा केवल अपना भविष्य नहीं बनाता, वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य भी बनाता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, हमने जाना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय को। अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

कि बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में यही कहना चाहेंगे कि हमें केवल अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेना होगा और यही डॉक्टर राधा कृष्णन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम कथा कहानी को एक नई शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ और इस कहानी का शीर्षक है भाई बहन का अटूट रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी अभी हमारे बीच में रक्षाबंधन त्योहार गया है और रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा के लिए वचन देते हैं। यह भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं भाई बहन के रिश्तों के बारे में, उनके महत्व के बारे में। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं भाई और बहन का पहला प्यारा सा गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में, आपकी अपनी साथी जागरण।

गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज हमारा रविवार का दिन है और आज ही के दिन मैं प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक भी मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि आज हम जानने वाले हैं भाई बहन के अटूट रिश्ते के बारे में। ये अटूट रिश्ते की लंबी और प्रेरणादायी कहानी है जो संघर्ष के साए में रोशन उम्मीद है। साथियों, भाई बहन का रिश्ता इस सृष्टि के सबसे पवित्र अनमोल भावनात्मक बंधनों में से एक है, ये हम सभी जानते हैं। ये केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि दो आत्माओं के बीच का एक ऐसा अटूट अनुबंध है जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक दूसरे की ढाल बनता है। बचपन के निर्दोष शैतानियों से लेकर जवानी के कड़े इम्तिहानों तक भाई बहन का ये सफर इस बात का प्रमाण श्रोता कि इंसान को जीवन में कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें बिना किसी शर्त या स्वार्थ की केवल परवाह और स्नेह की महक होती है। तो आइए साथी सुनते हैं कार्यक्रम कहानी को। कहानी शुरू होती है इस तरह से। श्रोताओं, एक शांत और छोटे से गांव में मदनपुर नाम की जगह पर दो बच्चे रहते थे जिनका नाम था क्षितिज और नंदनी। क्षितिज 14 वर्ष का था और नंदनी उससे 4 साल छोटी यानी कि 10 वर्ष की थी। उनके पिताजी गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय में चपरासी थे और माताजी घरों में सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह घर का चूल्हा जलाती थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी श्रोताओं, लेकिन बच्चों की आंखों में सपनों की कोई भी कमी नहीं थी। क्षितिज पढ़ाई में बहुत होशियार था और गणित के सवालों को चुटकियों में हल कर देता था। वहीं नंदनी की बात करें तो नंदनी को चित्रकला और कहानियां लिखने का बहुत ही शौक था। दोनों भाई बहन में एक गजब का अपनापन था। क्षितिज अपनी छोटी बहन नंदनी का साया की तरह ध्यान रखता था और स्कूल जाते वक्त उसके फटे हुए जूतों को सिलाई करके ठीक कर देता था। उसके बस्ते में अपनी तरफ से एक मीठी टॉफी छुपा देना क्षितिज की रोज की आदत थी। साथ ही वक्त का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। क्षितिज अब 11वीं कक्षा में आ गया था और नंदनी 7वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। एक दिन जब क्षितिज स्कूल से घर लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर के कुछ लोग इकट्ठा है। अंदर जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिताजी को खेत में काम करते समय अचानक दिल का दौरा पड़ा था और वे उस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे। इस अचानक हुए आघात ने उस परिवार की कमर तोड़ कर रख दी थी। कमाने वाला इकलौता सदस्य अब इस दुनिया में नहीं था। माँ का तो रो कर इतना बुरा हाल था। घर में खाने के नाले पड़ने लगे थे। गांव के कुछ साहूकारों का कर्ज सिर पर अलग से मंडरा रहा था और ऐसे में रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। श्रोताओं, परिस्थितियों का दबाव इतना बड़ा कि क्षितिज के सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों ने सलाह दी, अरे क्षितिज, अब पढ़ाई लिखाई का बहुत उतार दो। तुम बड़े हो, शहर जाओ और किसी कारखाने में मजदूरी करो, तभी तुम्हारे घर का चूल्हा चलेगा और तुम्हारी बहन की शादी का जुगाड़ होगा। क्षितिज अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने सारे सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी बस यहीं तक सीमित रह जाएगी। एक रात जब पूरा घर गहरे नींद में था, क्षितिज घर के आंगन में बैठकर फुट-फुट कर रो रहा था। साथ ही अचानक उसे अपने कंधों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने नंदनी खड़ी थी। नंदनी की आंखें भी नम थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। नंदनी ने अपने छोटे छोटे हाथों से क्षितिज के आंसू पहुंचे और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, भैया आप रो क्यों रहे हो? क्या आपको पापा का वो सपना याद नहीं जो वे रोज रात को मुझे सुनाते थे? वे कहते थे कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। अगर आज आपने हिम्मत हार दी तो पापा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्षितिज ने अपनी बहन को देखा और उसे अपने गले से लगा लिया। उस छोटी सी बच्चे के शब्दों ने क्षितिज के भीतर राख बन चुकी उम्मीद को फिर से धड़कती हुई आंख में बदल दिया था। दोस्तों, अगले ही दिन से क्षितिज ने अपनी जिंदगी की नई जंग शुरू कर दी। उसने सुबह के वक्त गांव के बाहर एक दूध की डेयरी पर दूध पहुंचाने का काम शुरू किया। दिन में स्कूल जाता और शाम को घर आकर नंदनी को पढ़ाता था। नंदनी ने भी अपने भाई का साथ देने के लिए घर का सारा काम काज अपने हाथों में ले लिया। उसने माँ के साथ मिलकर कपड़ों की सिलाई में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रास्तों में कांटे बहुत थे दोस्तों, और अक्सर कहते हैं कि जब परिस्थितियाँ बुरी होती है तो रास्ते में कांटे बहुत आते हैं। पैर कई बार लहूलुहान हुए लेकिन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। जब भी क्षितिज को थकान महसूस होती, नंदनी उसके माथे पर हाथ फेरकर उसे प्रेरित करती, और जब कभी नंदनी उदास होती
क्षितिज उसे अपनी सफलता के किस्से सुनाकर हंसा देता था। कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास के साथ संगीत के श्रोताओं, क्षितिज ने अपने लगन के दम पर न केवल 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया बल्कि स्कॉलरशिप के सहारे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद उसने संघ लोक सेवा आयोग UPSC की कठिन परीक्षा की तैयारी शुरू करी और अपनी पहली ही कोशिश में शानदार रैंक के साथ IAS अधिकारी बन गया। दोस्तों, जिस दिन क्षितिज के चयन का परिणाम आया उस दिन पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल था। क्षितिज ने सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए और उसके बाद अपनी बहन नंदिनी को अपनी बाहों में भर कर फक पड़ा। नंदिनी की आंखें भी खुशी के आंसुओं से नम थी। उसी वर्ष नंदिनी ने भी अपनी मेहनत के दम पर अपनी पढ़ाई पूरी कर एक बेहतरीन लेखिका और प्रोफेसर के रूप में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, आज वे दोनों भाई बहन जिस मुकाम पर थे वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कांटेदार था, लेकिन उनके आपसी प्रेम और विश्वास ने हर बाधा को धूल चटा दी थी। और ये कहानी हमें संदेश देती है कि जीवन की मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर भाई बहन का अटूट साथ और एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो तो इंसान शून्य से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। ये रिश्ता खून का तो होता ही है, साथ ही आत्मा का भी होता है। और आत्मा का एक ऐसा बंधन है जो जीवन के हर अंधेरे को चीर कर उजाला ले आता है। इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे इस कहानी के माध्यम से कि मुसीबतों के तूफानों से जो कभी डगमगाए ना, भाई बहन का ये पावन रिश्ता कभी टूट पाए ना। जब हौसले बुलंद हो और अपनों का साथ हो तो हर नामुमकिन मंजिल को भी अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भाई बहन का अटूट रिश्ता। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई, वह मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं

गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और गीत से पहले मैंने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी भाई बहन की अटूट रिश्ते को लेकर। वही आपसे कहना चाहूंगी कि खून का रिश्ता तो कुदरत की एक सौगात है, पर हर मुश्किल को आसान बना देना भाई बहन के प्यार की बात है। जब दुनिया साथ छोड़ दे और रास्ते हो जाए बंद, तो भाई बहन का साया बनता है सबसे मजबूत प्रबंध। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगी कि इस संसार में जितने भी रिश्ते ईश्वर ने बनाए हैं, वहीं भाई बहन का रिश्ता हम देखते हैं कि सबसे अनोखा होता है, सबसे पवित्र होता है और भावनात्मक रूप से सबसे मजबूत भी होता है। जैसे क्षितिज और नंदिनी का था, ये रिश्ता केवल दो शरीर या दो इंसानों का मिलन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये दो आत्माओं का एक ऐसा पवित्र बंधन है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त और बिना किसी दिखावे के केवल प्रेम और समर्पण पर टिका होता है। बचपन की कोमल स्मृतियों से लेकर जीवन की ढलती उम्र तक भाई बहन का ये साथ इंसान को हर कदम पर संबल प्रदान करता है और ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके साए में व्यक्ति खुद को दुनिया की हर मुसीबत से सुरक्षित महसूस करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूंगी साथियों कि निस्वार्थ प्रेम और स्नेह दुनिया का हर रिश्ता कहीं न कहीं किसी न किसी उम्मीद या स्वार्थ से बंधा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि भाई बहन का रिश्ता इसका अपवाद है। हाँ, भाई अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटता और बहन अपने भाई की सफलता के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है। बचपन की खट्टी मीठी यादें, चॉकलेट के एक टुकड़े के लिए झगड़ना, टीवी के रिमोट पर अधिकार जमाने के लिए तकरार करना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए एक दूसरे का ढाल बन जाना, ये सब इस रिश्ते की अमूल्य धरोहर है और ये यादें जीवन भर हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। मानसिक और भावनात्मक संबल जब इंसान जीवन में अकेला पड़ जाता है दोस्तों, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता, तब भाई या बहन की एक आवाज, तो चिंता मत कर मैं हूँ तेरे साथ, व्यक्ति के भीतर एक नया पहाड़ जैसा हौसला जगा देती है। भाई बहन के वो साथी नहीं होते बल्कि सबसे अच्छे आलोचक और मार्गदर्शक भी होते हैं, जैसे कि नंदिनी क्षितिज के लिए थी और क्षितिज नंदिनी के लिए। वे बिना किसी नाक लपेट के हमारी गलतियों का आईना हमें दिखाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों कि जीवन हमेशा एक जैसी गति से नहीं चलता, वहाँ सुख और दुख दो परछाओं की तरह आते जाते रहेंगे। जब किसी परिवार पर अचानक कोई आर्थिक संकट आ पड़ता है, जैसे क्षितिज पर और नंदिनी पर आया था, या कोई विपत्ति सिर उठाती है, तब सबसे पहले भाई बहन एक दूसरे की रीढ़ बनते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घर की परिस्थितियों के कारण बड़े भाई को अपनी उच्च शिक्षा अधूरी छोड़कर आजीविका के संघर्ष में उतरना पड़ता है, तो छोटी बहन घर की चार दीवारी के भीतर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ संभालती है। और यही आपसी तालमेल और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना ही है जो बड़ी से बड़ी आंधी को भी थाम लेती है। इसलिए भाई बहन का रिश्ता एक ऐसी चट्टान की तरह है जिस पर समय के थपेड़ों, आंधियों और तूफानों का कोई असर नहीं पड़ता। ये रिश्ता हमें सिखाता है दोस्तों कि जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि अपनों का साथ और अटूट विश्वास हमारे पास है, तो हम किसी भी हार को जीत में बदल सकते हैं। ये बंधन जन्म जन्मांतर का एक ऐसा सफर है जो जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। और कहा भी गया है दोस्तों कि मुसीबतों के तूफानों से जो कभी डगमगाएगा, भाई बहन का ये पावन रिश्ता कभी टूट पाए ना। जब हौसले बुलंद हो और अपने का साथ हो, तो हर नामुमकिन मंजिल को भी अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन की मुश्किलें कितनी बड़ी क्यों न हो, अगर भाई बहन का अटूट साथ और एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो, तो इंसान शून्य से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। रिश्ता खून का तो होता ही है, साथ ही ये आत्मा का एक ऐसा बंधन है जो जीवन के हर अंधेरे को चीर कर उजाला ले आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी और इससे जुड़ी कुछ बातें। अब समय का मान रखते हुए विदा लेना होगा, पर जल्दी जल्दी सुन लेते हैं।

इसी गीत के साथ साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वह आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम और भाई बहन से भरे ये गीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपरा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो साथ ही फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी। आ गई हूँ फिर से कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को आपको कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में कुछ नई नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। तो जैसा कि आज भी रविवार का दिन है, तो आज भी कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नई कहानियाँ। बच्चों, वो कहानियाँ कौन सी होने वाली है ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम गीत संगीत के साथ पहले मनोरंजन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे कौन सी कहानियाँ रहने वाली है। तो बच्चों, मजा बहुत आएगा कार्यक्रम में, लेकिन शुरुआत में पहले सुनते हैं हम कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में।

वेलकम बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में। जैसा कि बच्चों, गीत संगीत तो कार्यक्रम में हमारे आपसे चल ही रहे हैं, तो अब मुझे आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातचीत की पहली कहानी कौन सी रहने वाली है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में जो कहानी मेरी आपसे रहने वाली है उसका नाम है चुटकी और जादुई जंगल की खोज। है ना बिल्कुल अनोखा नाम बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है। बच्चों, चुटकी का अनोखा दिन, यानी कि चुटकी एक प्यारी सी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। बच्चों, उसका सबसे बड़ा शौक था पेड़ पौधों और जानवरों के साथ खेलना। बच्चों, हर सुबह वह जंगल के पास जाकर वहाँ की ताजगी का आनंद लेती थी। एक दिन क्या हुआ, जब चुटकी अपने दोस्त मोंटू के साथ जंगल में खेल रही थी, उसे एक पुराना और रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे पर रंगीन पेड़ों, चमकते सितारों और अजीब से झील का नाम लिखा हुआ था। बच्चों, चुटकी के दोस्त मोंटू ने उत्सुकता से पूछा, अरे चुटकी, ये क्या है? चुटकी ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोली, मुझे लगता है कि यह किसी जादुई जगह का नक्शा है। तुम क्या कहते हो, हमें इसे खोजना चाहिए। अगले दिन बच्चों, सुबह चुटकी और मोंटू और उनका पालतू खरगोश बबलू नक्शे को लेकर जादुई जंगल की खोज पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई मजेदार चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेड़ों पर झूलती हुई तितलियाँ, गाते हुए पक्षी और बोलने वाला तोता। बच्चों, उनको देखकर तोता बोलता है, तुम जादुई जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें तीन पहेलियाँ हल करनी होगी। तो चुटकी ने पूछा कि वो तीनों पहेलियाँ क्या है। तो तोता बोला, सबसे पहले पहली सुलझाओ। बच्चों, उसने कहा, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं? मोंटू ने सोचा, बोला, वक्त। हाँ, जवाब है वक्त। बच्चों, फिर तोता मुस्कुराया और बोला, सही जवाब, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर क्या हुआ बच्चों, रास्ते में चुटकी और उसके दोस्तों ने एक नन्हे भालू को देखा जो पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। चुटकी ने तुरंत अपने पास रखी दवा से उसकी मदद की। भालू, जिसका नाम गोलू था, उनकी मदद से वो बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें जादुई जंगल का रास्ता दिखा सकता हूँ। बच्चों, आगे बढ़ते हुए वे एक चमकती हुई झील पर पहुँचे। वहाँ एक बोलती हुई मछली मिली। मछली ने कहा, अगर तुम इस झील को पार करना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि किस चीज का स्वाद सबको अच्छा लगता है लेकिन दिखने में नहीं होती। बच्चों, ये सुनकर चुटकी के मन में सबसे पहले जवाब आया। उसने कहा, ज्ञान। फिर क्या हुआ, मछली ने मुस्कुराकर रास्ता खोल दिया। बच्चों, जब वे जादुई जंगल की सीमा पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे, पक्षी गाना गा रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। लेकिन तभी एक बड़ा बंदर आया और बोला, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी पहेली का जवाब देना होगा। बंदर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देती है? अब तो बच्चों मोंटू और गोलू सोच में पड़ गए, लेकिन चुटकी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देती है। इतने में वो सोच ही रहे थे कि चुटकी ने जवाब दिया, क्या वह समय है? बच्चों, बंदर ने हंसते हुए उन्हें आगे जाने दिया, यानी कि यह सही जवाब था। फिर क्या हुआ, जंगल के अंदर उन्हें पता चला कि वहाँ के जानवर एक दुष्ट जादूगर के कारण परेशानी में थे। जादूगर ने जंगल के सारे पानी के स्रोतों को बंद कर दिया था। बच्चों, चुटकी ने अपने दोस्तों के साथ जानवरों की इस समस्या को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। फिर क्या हुआ, गोलू और बबलू ने जादूगर का ध्यान भटकाया, मोंटू ने उसके महल के गेट खोले और चुटकी ने जादुई नक्शे की मदद से उसके पानी के स्रोत को खोल दिया। बच्चों, जैसे ही पानी बहने लगा, जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। जादूगर ने चुटकी से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। बच्चों, जंगल ने चुटकी और उसके दोस्तों को एक चमकता हुआ जादुई सितारा दिया जो कि उनकी बहादुरी का प्रतीक था। फिर क्या हुआ, चुटकी, मोंटू और गोलू खुशी खुशी अपने गांव लौट गए। उन्होंने ये सीखा बच्चों कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की

0: पहली कहानी चुटकी और जादुई जंगल की खोज। इस कहानी से हमें ये सीख मिली बच्चों कि हर मुश्किल का हल तो मिल सकता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो। और हमें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। यानी कि बच्चों, ये कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी, क्योंकि इस कहानी से हमें एक चीज ये भी सीखने को मिली कि अगर हमें किसी भी मुश्किल को पार करना है तो उसके लिए हमें धैर्य का उपयोग भी करना होगा। यानी कि हमारे पास में धैर्य की क्षमता भी होनी चाहिए। बच्चों, हमने देखा कि अगर तोते की पहेली का जवाब चुटकी और मोंटू धैर्य के साथ नहीं देते तो शायद उस पहेली का जवाब उन्हें नहीं पता होता। तो ऐसे हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें हमेशा अपनी मुश्किलों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। तो जैसा कि बच्चों, ये कहानी तो हमारी पूरी हो गई। अब मुझे आपको मेरी दूसरी कहानी के बारे में बताना है। तो दूसरी कहानी के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में, और सुनते रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM।
1: चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चक चो।

बच्चों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने चुटकी और जादुई जंगल की खोज की कहानी के बारे में जाना था, अब यहीं बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। बच्चों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है जादुई पेंसिल और टिंकू का कारनामा। यानी कि बच्चों, टिंकू एक छोटे से गाँव में रहता था। वह बहुत ही शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। आपको बताऊं तो पढ़ाई में वह ज्यादा तेज नहीं था और हमेशा अपनी कॉपी किताबों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनाया करता था, क्योंकि इसी में उसको खुशी मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, स्कूल से लौटते समय उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे बैठे देखा। देखने में तो वह बहुत ही थका हुआ लग रहा था। बच्चों, टिंकू ने उससे पूछा, दादाजी, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने टिंकू को एक सुनहरी पेंसिल दी और कहा, यह पेंसिल जादुई है, तुम इसका इस्तेमाल ध्यान से करना। बच्चों, टिंकू ने उस पेंसिल को हाथ में ले लिया और खुश होकर अपने घर पर आ गया। अगले दिन क्या हुआ, जब टिंकू स्कूल में अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था तो उसने देखा कि जो कुछ वह लिख रहा था वह सच हो रहा था। उसने एक पतंग का चित्र बनाया और अचानक से वह देखता है कि उसकी कॉपी से एक असली पतंग निकलकर उड़ने लगी। बच्चों, टिंकू ये सब देखकर खुश तो था, लेकिन उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। अब टिंकू ने अपनी जादुई पेंसिल से गांव के लोगों की मदद करने का सोचा। वह जो भी चीज बनाता वह सच होती जाती थी। अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता था तो वह उनके लिए खाना बनाता, और अगर किसी के पास कपड़े नहीं होते तो वह उन्हें कपड़े भी बनाकर दे देता था। लेकिन बच्चों, टिंकू के दोस्तों को जब पेंसिल के बारे में पता चला तो उनमें से कुछ ने इसका गलत फायदा उठाने की सोची। उन्हीं में से एक था मोनू, जो टिंकू का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने टिंकू की पेंसिल चुरानी चाही। उसने सोचा कि वह पेंसिल से अपने लिए ढेर सारा सोना बनाएगा। उसने सोने के सिक्कों का चित्र बनाया, लेकिन बच्चों, वह देखता है कि पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, पेंसिल पर से एक छोटा सा संदेश ऊपर की ओर दिखाई देने लगा। उसमें लिखा था कि यह पेंसिल केवल अच्छे कामों के लिए बनाई गई है। बच्चों, ये पढ़कर मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने टिंकू से माफी मांगी। तब से बच्चों, टिंकू को पता चल गया कि उसे इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना है। फिर टिंकू ने पेंसिल का सही इस्तेमाल करने की ठानी। उसने गाँव में एक बड़ा खेल का मैदान बनाया जहाँ बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे। उसने गांव में एक पुस्तकालय भी बनाई ताकि बच्चे वहां जाकर किताबें पढ़ सके। बच्चों, धीरे धीरे टिंकू का गांव खुशहाल बन गया और जादुई पेंसिल की बदौलत हर कोई खुश था। लेकिन टिंकू को यह समझ में आ गया था कि असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि इरादों और मेहनत में होती है। एक दिन जादुई पेंसिल ने आखिरी बार कुछ लिखा, अब मेरा काम पूरा हुआ। टिंकू, तुमने सच्चे दिल से दूसरों की मदद की, अब यह जादू तुम्हारे अंदर है। और फिर बच्चों, पेंसिल धीरे धीरे गायब हो गई। टिंकू अब समझ गया था कि जादू असली नहीं बल्कि मेहनत और अच्छे कामों का परिणाम होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, जादुई पेंसिल और टिंकू का कारनामा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि सच्चा जादू हमारी अच्छाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है, ना कि किसी चीज में। तो जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे कहानियां तो पूरी हो चुकी हैं बच्चों, जैसा कि हमने दो कहानियों के माध्यम से ये जान लिया, ये जो कहानियां होती है वो हमारे लिए कितनी प्रेरणादायी होती है, और अगर इन कहानियों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल रूप से जी सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों, कहानियां हमारी आपसे पूरी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं यहाँ पर एक और गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे फरमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजनी पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉग रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे फरमान में जब भी हम हर रविवार को जुड़ते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जुड़ते हैं। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातों को, फिर हम हमारी बातों को आगे जारी रखेंगे।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वागर रेडियो परिवार में।
2: जी मैम।
1: जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम से आज जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: मेरा नाम गौतम लाल बरगोट है, मुकाम पर रुंजा है, तहसील काडू जिला बांसवाड़ा का हूँ।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने आपका नाम और आपका परिचय हमें बताया तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसे बीता, उसके बाद क्या किया आपने और अभी आपका जीवन जो है वो किस तरीके से बदला।
2: बचपन में तो मैम हमने बहुत परिस्थिति देखी है, जैसे खाने के लिए अनाज की बहुत मुश्किल था, जिसमें क्या हमने कई कई अड़द को सुखा के फिर खाना खाया।
1: बिल्कुल।
2: रोटी बना के और कई जगह हमने भूखे भी रहे। उसके बाद इतनी परिस्थिति में भी हमने शिक्षा ग्रहण की।
1: जी जी।
2: यहाँ से मैंने बड़ी शैली भी शिक्षा ग्रहण की और वहाँ पर जब अभी सीनियर में ये बच्चों के लिए आ रहा है विज्ञान, जैव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये रासायनिक विज्ञान, ये सब ये, और ये वो शिक्षा मैंने छठी में ग्रहण की।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद धीरे धीरे मैंने शिक्षा ग्रहण करते हुए मैंने ये बड़ी शैली की। उसके बाद ये अपने यहाँ घाटोल आया।
1: बिल्कुल।
2: घाटोल में मैंने सातवीं में क्लास में एडमिशन लिया। नाइन्थ में पास करने के बाद एक एग्जाम निकला था जैसे निम्बाड़ा करके चेन्नई वाला।
1: जी जी।
2: तो उसमें मैंने भाग लिया। तो भाग लिया तो वहाँ पर जैसे हमारा दौड़ भी हुई, दौड़ हुई, उसके बाद जैसे घुटनों पे हम दौड़े, घुटनों पे

0: मैंने जी सर के जो काम तो वही था जैसे नाम वो भी हमने हमारे संगठन के द्वारा वो भी करवाया। अब 2011 से 2011 में सर्वे हुई खाद्य शिक्षा वाली, उसके बाद 2002 में हुई तो उसमें फिर विसर किया। अब उसमें से सरकार ने बैंड लगा रखा था, किसी का नाम जोड़ना किसी का क्या करना वो सब बंद था, हमने विसर किया। अब क्या करना था, हमारे संगठन का एक बैठक हमने अलग से सक्षम समूह और ये छोटी छोटी बैठक है, बाकी एक संगठन बनाया हुआ है कृषि एवं स्वराज
1: संगठन,
0: तो उसमें वो बात हमने रखी और उस बात को फिर सभी ने मिलकर एक क्लब किया, मतलब क्यों नहीं इस कृषि को आगे बढ़ाई। तो उसमें हमारे को क्या बात हम सब जानते, बाकी थोड़ा हमारे पास क्या कागज बनाने में दिक्कत आती है। फिर हमने वागदार का सहयोग लिया, हमने ये काम कर कैसे करेंगे, तो उनके फील्ड वर्क ने कहा भाई ये बात आगे तक पहुँचाएंगे, तो कई बड़े अधिकारी के पास वागदार में पहुँचाई ये बात और उनका एक पत्र हमारे को बना के दिया।
1: बिल्कुल,
0: हमने उसका ज्ञापन और आग्रह पत्र कार्यालय में जाके दिया।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बाद क्या मार्क भी करवाया, तो काम नहीं हुआ तो उसको फिर लेकर गए कि सर ये हमारा काम अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ।
1: बिल्कुल,
0: तो अब उन्होंने सरकार ने फिर एक्शन लिया कि चलो ये काम कुछ भी करके खोलना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद हमने फिर विचार किया खोली साइट और नामांकन जुड़े और सब किया और होने के बाद फिर भी कुछ अड़चन आ रही, फिर हमने फिर ज्ञापन दिया क्यों नहीं ये साइट गाँव गाँव में ई मित्र पे खुलती रहती है, बाकी अब जो है सदा खुली रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्यों नहीं ये पंचायत समिति स्तर पे एक साइट खुली रहे ताकि किसी लोगों का नाम
1: जाए तो वो जुड़ जाए
0: तो इस प्रकार से फिर भी हमने अवगत कराया। और उसके बाद जैसे पशु बीमारी आई लंपी वायरस वाली,
1: बिल्कुल,
0: तो संगठन ने हमने मिलकर विचार किया कि ये बहुत घातक बीमारी है, अब पशु ही नहीं रहेगा तो अपन क्या रहेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि किसानों का और हम सबका
0: एक ही जुड़ाव है।
1: बिल्कुल, पशु ही है। बिल्कुल,
0: तो पशु के बिना हमने ये बेकार हो जाएगी, उसके लिए हमने संगठन ने और हमने मिलकर मतलब किसी किसी अपने आयुर्वेदिक की दवाई ढूंढाई, तो वो दवाई हमने फिर बना के फिर लड्डू बनाए उस दवाई के, जैसे हल्दी और नीम के
1: जी जी,
0: और इस प्रकार से मतलब ये लड्डू बना के फिर मार्केट में लेके गए उसको।
1: बिल्कुल,
0: और हर पशु वाले को कह दिया भाई यहाँ पर हम आपको पशु की बीमारी के ये दे रहे हैं, तो सब लगे और कई पशु की जान बच गई इसमें।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वाग्धारा संस्था से जुड़ने के बाद आपने कई सारे कार्य किए हैं और अभी भी आप वाग्धारा संस्था से जुड़े हैं।
0: और भी हमारा अच्छा ही काम, और अभी अभी ये है कि हमने एक लक्ष्य लिया है कि प्राकृतिक घातक हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: और एक विचार ये हो रहा है कि एक कुरीतियां समाज में
1: कई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल,
0: विशेष मतलब विदेशों से आके मतलब ये अपने गांव में जुड़ रही है, तो इसको अब निकालनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो अभी हमने एक युवा संगठन बनाया है, जैसे वाग्धारा तो है ही, इसके एवज में क्योंकि अब युवा संगठन अलग से बनाया हमने फिर।
1: बिल्कुल,
0: ताकि ये नशा मुक्त और पर्यावरण संबंधित और नाजायज खर्चा,
1: बिल्कुल,

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमानों से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम हमारे मेहमान।

বাবর রেডিও নিভৃত শুনো আটা ফোন কাম পোস্ট কোপড়া বাগধারা কে নিকস পাস রাজস্থান আমরা পিন কোড নম্বর হ্যাঁ 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजनी पारेश्वर को कार्यक्रम

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, जहां सत्य हो हमारी पहचान, अहिंसा हो हमारा सम्मान, स्वच्छता, सेवा और भाईचारे का संदेश फैलाएं, आओ बापू के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएं, कदम कदम पर हो इंसानियत का उजियारा, यही हो गांधी जी के सपनों का भारत हमारा।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम सबके गांधी में हमारा नारी प्रकरण चल रहा था, इसी बीच इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज के विशेष कार्यक्रम में हम बातचीत की शुरुआत करें तो श्रोता साथियों, इससे पता लगता है कि गांधी शील रक्षा के अंतिम साधन के रूप में मरने की तैयारी को मान्यता देते हैं। वे ऐसा भी मानते थे कि अत्याचार एक व्यक्ति द्वारा हो या अधिक द्वारा, तब भी स्त्री मर कर तो इज्जत बचा ही सकती है। ऐसी शक्ति साधने के लिए स्त्री या पुरुष को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, पर यदि उसमें ऐसी शक्ति न हो और यदि वह बलात्कार की शिकार बन जाए तो इसमें स्त्री उसे लेकर अपराधी नहीं समझनी चाहिए। समाज उसे हरगिज न दुत्कारे, बल्कि उस बलात्कार के कारण यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो उसके बालक के पालन पोषण की जिम्मेवारी भी समाज को वहन करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रश्न के साथ जुड़ा दूसरा प्रश्न स्त्री के अपहरण का है। कशिश, इसके अधिक से अधिक प्रसंग भारत विभाजन के समय देश के सरहदों के दोनों तरफ हुए। इस प्रसंग में मृदुला बहन साराबाई, कमला बहन पटेल और उनके साथियों ने जो साहस और वीरता दिखाई वह इतिहास में अमर रहेगी। इन बहनों ने भारत और पाकिस्तान में दूरस्थ भागों तक जाकर अपहृत महिलाएं कहा है उनको ढूंढ निकाला। उनमें से जो वापस देश में आने को तैयार हुई उनको वापस ले आई। जिन महिलाओं के परिजन मूल देश के मिले उनके साथ अपहृत बहनों का मेल मिलाप करवाया। जो परिजन उन बहनों को परिवार में फिर से लेने को तैयार थे उनको वहाँ बसा दिया। जिन बहनों को ऐसा आधार नहीं मिल पाया श्रोता साथियों, उनके लिए निर्वाह की दूसरी पर्याप्त व्यवस्था की गई। इन सेविकाओं की हिम्मत, व्यवहार, कुशलता, धैर्य और होशियारी देखकर कौन मुग्ध न हो जाए। उनके इस पराक्रम के पीछे गांधी जी की प्रेरणा काम करती थी। मृदुला बहन ने तो नुआखली में भी गांधी जी के साथ काम किया और बिहार में भी। वे अपनी मौलिक सोच से बहुत काम कर लेती थी, पर जब अवसर मिलता तब गांधी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने से नहीं चूकती थी।
1: जी बिल्कुल साथियों, गांधी जी की प्रेरणा से दूसरी भी अनेक बहनों ने भयंकर संकट की घड़ी में अत्यंत साहस के साथ दायित्व पूरा किया था। विभाजन के बाद गांधी जी ने डॉक्टर सुशीला को पंजाब में वहाँ के हिंदू निराश्रितों की छावनी में भेजा।
0: बिल्कुल।
1: पुरुष अधिकार भी जहाँ से भाग जाना चाहते थे, ऐसी छावनी में अंजलि जी पहले मैं मरूंगी फिर निराश्रितों को कुछ होगा, ऐसी कहते हुए डॉक्टर सुशीला ने आक्रामक दलों से गिरी छावनी के लोगों को फौरन भारतीय सीमा में सेना के सहयोग से पहुंचाने की व्यवस्था की थी।
0: जी बिल्कुल।
1: दोस्तों, बीबी अब्दुस्सलाम ने तो नोआखाली में गाँव में जाकर वहाँ से भयभीत होकर भागे हिंदुओं को अपने गांव में वापस लाकर बसाने का भी काम किया। नितांत दुबली पतली देह वाली बीबी अब्दुस्सलाम

0: पट कहती है कि गांधी जी ने ये ऐतिहासिक आगवानी नहीं की होती तो मेरे जैसी महिलाएं आज जहां तक पहुंची हैं वहां तक पहुंच ही ना सकी होती।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों को सम्मान युक्त नेतृत्व प्रदान किया है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल। साथियों, इन बहनों में मिस मेडेलिन स्लेट जैसी साधिका भी थी। उन्होंने तो अपनी पूरी जवानी गांधी जी की सेवा में बिता दी। यह सेवा करते हुए उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की कशिश कि भारत विदेशी आक्रमण का अहिंसक प्रतिकार कैसे कर सकता है इसका अनुमान लगाने के लिए गांधी जी ने उनको भारत के पूर्वी सागर तट वाले गांवों में सर्वे करने के लिए भेजा था।
0: बिल्कुल,
1: उस काम को उन्होंने अच्छी तरह निभाया था। गांधी जी स्त्रियों के प्रति मनुष्य के रूप में आदर रखते थे, तभी तो वे स्त्रियों को पुरुष के समकक्ष कार्यकर्ता के रूप में देख सके। उन्होंने स्त्रियों में इतना विश्वास व्यक्त किया जितना उनसे पहले के किसी नेता ने नहीं दर्शाया था। गांधी जी के इस विश्वास ने स्त्रियों में आत्मविश्वास विकसित किया। इसी से एक अमेरिकी निरीक्षिका ने लिखा कि आजादी के आंदोलन से पूर्व जहां स्त्रियां घूंघट रखती और घर से बाहर शायद ही नहीं निकलती थी, ऐसे गांव से अनगिनत स्त्रियों ने स्वेच्छा से कारावास झेला। गांधी जी को स्वराज के उपरांत न्याय एवं समता पर आधारित जैसा समाज निर्मित करना था, वैसा समाज सार्वजनिक कार्यों में स्त्रियों की स्वतंत्र भागीदारी के बिना संभव ही नहीं था। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी आत्मा की आवाज पर ऐसा कोई काम करने को तैयार नहीं थे। फिर उन्हें उसके पीछे की स्मृतियों का या शास्त्रों का कितना ही आधार क्यों न प्रस्तुत किया हो, तदनुसार किसी धर्म के आधार पर कोई बाल विवाह, विधवा पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आदि की बात करता तो वे मानने को तैयार नहीं होते।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी कार्यक्रम के माध्यम से नारी प्रकरण को लेकर बातचीत चल रही है, ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन अभी यहाँ पर सुनवाते हैं साथियों को एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन में नारी प्रकरण की बातचीत की ओर। जैसा कि बातें गीत से पहले भी साथियों बहुत अच्छी चल रही थी और हम जान पाए थे दोस्तों कि गांधी जी द्वारा किसी धर्म के आधार पर कोई बाल विवाह, विधवा पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आदि की बात करता तो वे मानने को तैयार नहीं होते थे।
1: बिल्कुल
0: यही अंजलि जी, अगर आगे बात करें तो 1927 में गांधी जी ने श्रीमती शारदा बहन कोटक को एक पत्र लिखा था कि स्त्री और पुरुषों में एक ही आत्मा निवास करती है, उस पर जाति, लिंग या देश के अंतर का कोई असर नहीं पड़ता। एक वीरांगना की जागृत आत्मा एक दुष्ट मनुष्य की निद्रित आत्मा से कुछ बढ़ चढ़कर कहती है।
1: बिल्कुल,
0: स्त्री और पुरुष या ब्राह्मण और शूद्र की आत्मा में ही मूलतः कुछ फर्क होता है। ऐसा समझाते हुए समाज में ऊंच नीच के भेदों का पोषण करने वाले लोगों को गांधी जी का यह स्पष्ट जवाब था।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, एक पत्र लेखक ने गांधी जी से यह पूछा कि पति पत्नियों को क्यों मारते हैं। गांधी जी ने लिखा कि पुरुष को स्त्री को मारने का जरा भी अधिकार नहीं। पुरुष क्या पत्नियों की अपेक्षा कम अपराध करते हैं? यदि पत्नियां पतियों के हर अपराध पर उनको मारने लगे तो बहुत कम समय में कम पति जीवित रह पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: वैसे तो सामान्यतः गांधी जी संतति नियमन के साधन उपयोग में लेने के विरोधी थे अंजलि जी। उन्होंने एक प्रसंग

0: कि पुरुष के दबाव के तले बार बार गर्भवती होकर शरीर निचोड़ देने वाली महिला को संतति नियमन के साधन काम में लेने की सलाह देते हुए महादेव भाई ने अपने डायरी में एक जगह लिखा है।
1: बिल्कुल कशिश, उन्होंने लिखा है कि पति का यह धर्म है कि उनकी पत्नी को सच्ची सहधर्मिणी मददगार और अर्धांगिनी से कुछ विशेष माने, उसे उसके सुख दुख का भागीदार बनना चाहिए। पत्नी को कभी पति की गुलाम नहीं बनना चाहिए, न वासना तुष्टि का साधन समझना चाहिए। पति अपने लिए जितनी स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है उतनी ही पत्नी को भी रखने का अधिकार है। जिस संस्कृति में स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता उसे शापित संस्कृति मानना चाहिए। पुरुष या स्त्री किसी के बिना संसार चल ही नहीं सकता, एक दूसरे के सहयोग से ही चल सकता है। यदि स्त्री का प्रकोप जाग उठे तो पुरुष को खत्म कर सकती है और इसी से उन्हें महाशक्ति माना जाता है।
0: जी हाँ,
1: इस प्रसंग में हम गांधी जी और कस्तूरबा के संबंधों के बारे में भी थोड़ा विचार कर लें। बहुधा ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने कस्तूरबा के साथ बहुत जुल्म किए थे। विशेष रूप से विदेशी लोगों को गांधी जी के प्रति शिकायत रही है। ऐसी मान्यता के पीछे एक कारण था गांधी जी की ईमानदारी और दूसरा कारण था ऐसा कहने वालों की समझ का अभाव। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ऐसे 2-3 प्रसंग ईमानदारी से उद्घृत किए हैं कि बाल्यावस्था में विवाह के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत पति होने का अधिकार आजमाया था। ऐसी बात भी उन्होंने आत्मकथा में लिखी है, पर उस पर टीकाकारों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। दक्षिणी अफ्रीका से वापस लौटते समय उनको मिलने वाले उपहारों को वे

शुरू करते हैं साथियों पाव भाजी बनाने की विधि। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें सारी सब्जियों को मिलाकर उबालना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें आलू, गाजर, फूल गोभी और मटर को पानी में उबाल लेना है। अब श्रोता साथियों, जब सब्जियां उबल जाएं तो उन्हें हमें कद्दूकस कर लेना है, यानी कि मेश कर लेना है और एक तरफ रख देना है। इसके बाद में प्याज, टमाटर और मसाले हमें तैयार करने हैं साथियों, जिसमें हम कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे, उसे गर्म करेंगे। अब उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर तक भूनेंगे साथियों। अब श्रोता साथियों, प्याज जो है वो हम देखेंगे कि हल्का सुनहरा हो गया है, तो सुनहरा होने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट उसमें डालकर कुछ सेकेंड के लिए और भूनेंगे। अब साथियों, जो हमने सब्जियां उबाली थी, जो मेश कर रखी थी, उन सब्जियों को हमें इसमें मिला लेना है। अब इसमें टमाटर डालकर हम इसे पकने देंगे। टमाटर अच्छे से पक जाए श्रोता साथियों, तो उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाए श्रोता साथियों, तो हम इसमें उबली हुई सब्जियां डालकर इसे मिक्स करेंगे। अब श्रोता साथियों, सब्जियों को अच्छे से मिला लें आप और फिर थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही रहने दें। फिर थोड़ी देर बाद पानी डालकर उसे और मिक्स करें, ताकि भाजी नरम और गीली हो जाए साथियों। अब 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकने दें, ताकि सभी मसाले और सब्जियां अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएं। अब श्रोता साथियों, जब तक हमारी भाजी बनकर तैयार हो रही है, तब तक हम करेंगे क्या, सर्व करने की तैयारी करेंगे। यानी कि हमें पाव को तवा पर हल्का सा सेंक लेना है, उसे हल्का सा घी लगाकर गर्म करना है साथियों। अब जैसे ही अगर भाजी तैयार हो जाती है, तो हमें हरा धनिया और नींबू का रस उसमें डालकर उसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब श्रोता साथियों, जैसा कि पाव और भाजी दोनों बनकर तैयार है, तो अब हमें पाव के साथ गर्मा गर्म भाजी परोसनी है। साथ में हम इसमें नींबू और प्याज की कटी हुई रिंग्स भी डालकर इसके स्वाद को और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप हेल्दी पाव भाजी को ताजे दही या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं साथियों, ये स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों है। तो दोस्तों, ये तो हमारे कार्यक्रम में स्वादिष्ट पाव भाजी बनकर तैयार हो गई। आगे भी एक और ऐसी स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि को लेकर मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसे कि साथियों गीत से पहले एक बहुत ही स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। हमने जाना था कि हम घर पर किस प्रकार से आसान तरीके से हेल्दी पाव भाजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि वो रेसिपी तो मेरी आपसे पूरी हो चुकी थी, अब यही जानते हैं साथियों एक और नई व्यंजन विधि के बारे में। साथियों अब हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। साथियों चने की दाल तो आप सभी ने देखी होगी, क्योंकि अक्सर हम दाल में चने की दाल का भी चुनाव करते हैं, जो कि स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद भी होती है। तो ऐसे में साथियों आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। इसकी अगर सामग्री के बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको चने की दाल लेनी है 1 कप, घी की आवश्यकता होगी जो कि आपको 2 से 3 चम्मच लेना है, गुड़ आपको लेना है 1/2 कप, पानी का आप इसमें इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार करने वाले हैं, काजू बादाम कटे हुए होने चाहिए, इलायची पाउडर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे जो कि हम 1/4 चम्मच लेंगे। तो दोस्तों ये तो सामग्री रही, फिर से सामग्री पुनः दोहराना चाहूंगी। तो साथियों आप लिख लीजिएगा कि हमें चने की दाल चाहिए होगी, घी चाहिए होगा, गुड़ चाहिए होगा क्योंकि हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, काजू बादाम हमें इसमें लेने हैं, इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी हम इसमें करेंगे हलवे का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये तो सामग्री रही, अब बनाने की व्यंजन विधि को जानते हैं। तो सबसे पहले श्रोता साथियों आपको चने की दाल को अच्छे से धोकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेना है। फिर चने की दाल जो आपने भिगो कर रखी है उस दाल को मिक्सी में पीस लेना है। साथियों अब एक कढ़ाई में घी गरम करना है, पीसी हुई दाल जो है उसे डालकर उसमें भूनना है, फिर धीरे धीरे पानी डालकर पकने देना है साथियों, और फिर आपको गुड़ डालना है। साथियों जब दाल पूरी तरह पक जाए और जो गुड़ आपने डाला है वो मिलकर हलवे जैसा बन जाए, तो हम उसमें काजू बादाम जो हमने लिए थे वो डाल देंगे बारीक कटे हुए, और हम इसमें अब ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं साथियों कि हमारा गर्मा गर्म चने की दाल का हलवा बनकर तैयार है। हम चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं साथियों, क्योंकि पिस्ता भी एक तरह की सूखा मेवा होता है जो कि सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों आप घर पर चने की दाल का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो श्रोता साथियों ये थी हमारे आज के कार्यक्रम में 2 व्यंजन विधियां। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी पाव भाजी बनाने की रेसिपी के बारे में बताया था, और अभी हमने जाना कि हम चने की दाल का हलवा कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि ये दोनों व्यंजन विधियां आपको जरूर पसंद आई होंगी, और आप भी अपने घर पर इन्हें बनाकर इनका सेवन कर सेहतमंद रहेंगे। तो श्रोता साथियों जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है, और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और गीत।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, ये मुलाकात हमारी आपसे फिर होंगी अगले रविवार को कुछ नई स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन विधियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ श्रोता साथियों, नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। बागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जया पेड़ ने छांव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जया हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश लागे है। अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा दूंगा, मैं आपड़ी धरती में जीवन दान लूंगा।
4: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना कदम है, ये अभावारा काल में बदलाव की शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

डॉगर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, रोटी, कपड़ा और मकान, सबका समाधान भारत का संविधान।
1: जी हाँ, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान, सबका समाधान भारत का संविधान।

0: इस गीत के बाद साथियों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले रविवार इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रही थी संविधान और आदिवासी को लेकर। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना था आदिवासी अस्मिता का सवाल, इसी के साथ मुख्य धारा और मूल पहचान, साथ ही हमने जाना था संघर्ष के इतिहास के बारे में, इसी के साथ ब्रिटिश आदिवासी संघर्ष के बारे में जाना था और हम जान पाए थे संघर्ष के केंद्रीय बिंदु, यही जानेंगे भूमिजों का आंदोलन 1766 से 1800 तक के संदर्भ में।
1: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, इसी में हम आगे बात करें बंगाल के जंगल महाल, अब कुछ भाग पश्चिम में बंगाल और झारखंड में, के भूमिज आदिवासी किसानों, पाइको यानी कि सिपाहियों और सरदारों तथा कुछ जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव तथा विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए

0: जमीन दी जाती थी जो पाइकाना जमीन कहलाती थी। अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते हुए भूमिजों की पुश्तैनी जमीनें छीन छीन कर नए जमींदारों के हाथ बेचना और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई आबादी बसाना शुरू किया।
1: जी हाँ।
0: साथ ही पाइकों की जगह बाहर से पुलिस लाकर तैनात की। इससे हजारों पाइक जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन, कह सकते हैं कि सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। इन पाइकों और किसानों की संयुक्त शक्ति ने विद्रोह की वह लपट सुलगा दी जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बड़ा कठिन हो गया था।
1: जी हाँ।
0: इसके अलावा अंग्रेज शासकों ने बढ़ाए गए राजस्व को चुकाने में असमर्थ हो गए जमींदारों के हाथ से जमीन भी छीन ली। जमीन खो चुके जमींदारों में से कुछ इस विद्रोह में शामिल हुए। यह विद्रोह अकाल, लगान वृद्धि, जमीन की नीलामी और अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पात्र, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह समेत अनेक लोग उस आंदोलन के अगुवा थे। साथ ही रघुनाथ महतो ने 1769 में नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह आंदोलन करीब 35 वर्ष तक चला। कंपनी सरकार ने समझ लिया कि पाइकों, किसानों और जमींदारों को कुछ सुविधाएं, जैसे कि पाइकों को उनकी जमीनों की वापसी, राजस्व शेष रहने पर जमींदारों की जमीनों की नीलामी पर रोक, जमींदारों एवं घटवालों के पुलिस अधिकारों की पुनर्स्थापना किए बगैर इलाके में शांति संभव नहीं है। इसीलिए 6 मार्च 1800 को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया।
0: जी बिल्कुल, यही बात करे जागृति जी चेरो विद्रोह 1770 और 71 की, तो श्रोता साथियों वर्ष 1770 और 71 में वर्तमान झारखंड के पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे थे।
1: जी हाँ।
0: अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जिसे चेरो विद्रोह कहा जाता है। अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमक चेरो विद्रोहियों को हराने एवं पलामू पर कब्जा करने में सफल हुआ।
1: जी हाँ।
0: 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू के राजा चित्रजीत राय का दीवान जयनाथ सिंह एक भोक्ता सरदार था।
1: बिल्कुल।
0: अंग्रेज सीधे जयनाथ सिंह से ही बातचीत करते थे। 9 जनवरी 1771 को जयनाथ सिंह को पटना काउंसिल का पत्र उसके दूत गुलाम हुसैन खां के मार्तफ मिला, जिससे उसे शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर देने का आदेश दिया गया था।
1: बिल्कुल।
0: जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने को तो तैयार था, किंतु कुछ शर्तों के साथ। चूंकि कंपनी पलामू किला हथियाने पर आमादा थी, इसलिए अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह द्वारा रखी गई शर्तों को अनुचित कहकर उसे मानने से इनकार कर दिया।
1: बिल्कुल।
0: लड़ाई छिड़ गई। भोक्ता और चेरो आदिवासियों ने साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, किंतु भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुंजा भाग गया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। चेरो समुदाय के लोगों ने एक बार फिर ज्यादा कर वसूली एवं पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 में भूकंद सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। इसे दबाने में अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 में कंपनी सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया और 1814 में पलामू परगने की नीलामी की आड़ में अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हमने अभी जाना चेरो विद्रोह के बारे में, और चेरो विद्रोह 1770 से 71 के बीच में हुआ था। आगे जानेंगे तिलका आंदोलन के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि गीत से पहले चेरो विद्रोह के बारे में जाना था, यही जानते हैं तिलका आंदोलन के बारे में। अंजलि आंदोलन 1783 में हुआ था। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में झारखंड यानी कि वर्तमान के राजमहल क्षेत्रों में संथालों का प्रवेश हुआ। संथाल आदिवासियों के राजमहल प्रवेश का पहाड़ी समुदाय ने विरोध किया। कुछ मुठभेड़ों के बाद संथाल इस क्षेत्र में बस गए।
1: जी,
0: संथाल पहाड़ों पर रहते थे और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नावें गंगा नदी से होकर गुजरती थी तब पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे तथा डाक ले जाने वालों की हत्या कर देते थे। वे गुरिल्ला युद्ध यानी कि छापामार युद्ध करने में बड़े कुशल थे। इसी के साथ साथ वर्ष 1778 में अगस्टल क्लीवलेंट को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। उसने फूट डालने की नीति अपनाई और नियुक्ति के 9 महीने के भीतर 47 पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक बना लिया। इन सरदारों को कुछ सुविधाएं दी गई और अंग्रेज उनसे कोई कर नहीं लेते थे।
1: जी,
0: संथाल समुदाय के एक वीर सरदार तिलका मांझी ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि नीति एक समान होनी चाहिए। तिलका ने अंग्रेजों के समर्थक पहाड़िया सरदार जोराहा का विरोध किया और भागलपुर के पास वनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया।
1: जी बिल्कुल।
0: कहा जाता है साथियों कि तिलका और उनके साथी जब तक शाही खजानों व गोदामों को लूटकर गरीबों के बीच बांट देते थे, तिलका साल के पत्तों के माध्यम से घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित करते थे। उन्होंने वर्ष 1784 के आरंभ में अपने साथियों के साथ भागलपुर में डेरा डाल दिया। कहा जाता है कि 13 जनवरी 1784 के दिन तिलका ताड़ के एक पेड़ पर छुपकर बैठे हुए थे और उसी रास्ते से होकर गुजरते हुए घोड़े पर सवार क्लीवलैंड को उन्होंने तीर से मार गिराया था। इससे अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गई और तब अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकूट को भेजा गया था। आयरकूट ने पहाड़िया सरदार जोरहा के साथ मिलकर तिलका मांझी के समर्थकों पर हमला करने शुरू किए जिसमें अनेक लोग हताहत हुए, लेकिन तिलका मांझी बचकर भाग निकले और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपे। साथियों, आखिरकार 1785 में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया और उन्हें बरगद के एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई।
1: वह
0: स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है।
1: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी तमाड़ विद्रोह की, तो श्रोता साथियों, छोटा नागपुर के तमाड़ को केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में जो विद्रोह छेड़ा उसे तमाड़ विद्रोह कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: कंपनी सरकार की बाहरी लोगों को शरण देने की नीति और नागवंशी शासकों के अत्याचार इस विद्रोह के मूल कारण थे। तमाड़ में मुंडा आदिवासी कंपनी सरकार के अत्याचारों से त्रस्त थे।
0: जी हाँ।
1: कंपनी की नीतियों ने यहाँ बाहरी लोगों के आने और उनकी सुविधा संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त किया था। दूसरी ओर वे छोटे नागपुर खास के नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे।
0: बिल्कुल।
1: 1782 में धीरे धीरे तमाड़ में रामगढ़ पंचेत और वीरभूमि के विद्रोह इकट्ठा होने लगे। वे व्यापारियों को भी लूटने लगे थे। नागवंशी शासक ने विद्रोहियों को दबाने के लिए तमाड़ पर आक्रमण किया। इससे विद्रोह और भड़क उठा। 1783 में विद्रोहियों को कुछ जमींदारों का भी साथ मिल गया। अंततः मेजर जेम्स कॉम्फर्ट सेना की टुकड़ियों के साथ दिसंबर 1783 में तमाड़ में विद्रोह के आत्मसमर्पण के लिए विवश करने पहुंचा। तमाड़ में अगले 5 वर्षों तक शांति बनी रही।
0: बिल्कुल। इसी के साथ 1789 में तमाड़ में पुनः विद्रोह भड़क उठा। इस बार लेफ्टिनेंट कूपर ने जुलाई 1789 के आरंभ में विद्रोहियों पर दमन ढाया। तमाड़ फिर अगले 4-5 वर्षों तक शांत रहा। नवंबर 1794 में तमाड़ में विद्रोह फिर से भड़क उठा।
1: जी जी।
0: जिसे दबाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो गया। साथियों, 1796 में राही के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब राजा और उसके सैनिक सोना हाथों गए तो उन पर गांव वालों ने आक्रमण किया। कैप्टन बी पेन को जब पता चला कि आदिवासी नरेंद्र शाही का विरोध कर रहे हैं तो उसे हटा दिया। 1796 में इस विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया। तमाड़, सिल्ली, सोना हाथू व राहे के सभी आदिवासी तथा जमींदार इसमें कूद पड़े। 1798 में कैप्टन लिमंड तमाड़ के प्रमुख विद्रोह नेताओं को पकड़ने में सफल हुआ।
1: जी जी।
0: विद्रोहियों में सबसे शक्तिशाली भोलानाथ सिंह को कैप्टन बेन ने गिरफ्तार किया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तमाड़ विद्रोह बिखर गया।
1: जी बिल्कुल। जागृति जी, आपने सही कहा। अगर यही बात करें हो संघर्ष 1820 और 21 की, तो श्रोता साथियों, हो लोगों का निवास स्थल, हो देशम, हो जाति का देश, या कह सकते हैं कि कोल्हान कोलिस्तान के नाम से जाना जाता था।
2: जी हाँ,
1: होदेशम पर मुगलों या मराठों का कभी अधिकार नहीं रहा था। हालांकि पोरहाट के सिंह राजाओं का इन पर प्रभाव था, किंतु वे सिंह वंश के समकक्ष थे न कि अधीनस्थ। वे सिंह राजाओं को कोई नियमित कर नहीं देते थे, केवल समय समय पर कुछ भेंट और उपहार दे देते थे। ब्राह्मीय नियंत्रण से दीर्घकाल तक मुक्त रहने के कारण वो स्वतंत्र एवं लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे।
2: जी,
1: इसी कारण कंपनी काल में ये लड़ाका कोल के नाम से जाने जाते थे।
2: बिल्कुल, अंजलि सिंहभूम के राजा के बुलावे पर वर्ष 1820 में अंग्रेज अफसर मेजर रफसेज सेना की एक टुकड़ी के साथ हो देश में आया। चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर हो लोगों से हुई लड़ाई में अंग्रेज विजय हुए। इस दामन के बावजूद हो देशम के केवल उत्तरी भाग के हो पोरहाट के राजा को कर देने के लिए सहमत हुए। दक्षिणी कोल्हान के हो लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना जारी रखा। हो लोगों ने सीमावर्ती राज्यों के इलाकों में आंदोलन करना शुरू कर दिया। हो लोगों की इन गतिविधियों के कारण पोरहाट राजा को फिर से रफसेज से सहायता की गुहार लगानी पड़ी।
1: जी बिल्कुल,
2: वर्ष 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। हो लोगों ने रिचर्ड का एक महीने तक सामना किया, किंतु अंततः विरोध को निरर्थक जानकर कंपनी से संधि करना बेहतर समझा।
1: जी जी,
2: संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थी। हो लोगों ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया। हो लोगों ने अपने राजा और जमींदारों को 8 आना यानी कि 50 पैसा प्रति हल सालाना कर देना स्वीकार किया।
1: जी बिल्कुल जागृति, जब हम देखते हैं कि इस संधि के बावजूद कोल्हान में गड़बड़ी समाप्त नहीं हुई और 1831 और 32 में हो लोगों ने कोल विद्रोह में सक्रिय भाग लिया।
2: जी हाँ,
1: तो जागृति जी, इस तरीके से कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी श्रोता साथियों से आज बहुत अच्छी बातें रही है। संविधान और आदिवासी में हमने जाना भूमिजों का आंदोलन 1766 और 1800 के बारे में, इसी के साथ हमने जाना चेरो विद्रोह 1770 और 71 के बारे में, तिलका आंदोलन 1783 के बारे में हमने जाना, तमाड़ विद्रोह 1782 से 1858 के बारे में जाना, हो संघर्ष 1820 और 21 के बारे में जाना।
2: जी हाँ,
1: अगले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी फिर से मुलाकात होगी संविधान और आदिवासी संघर्ष के बारे में।
2: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हिती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत निश्रय खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ो सो व्यायाम ने तात्कालिक में जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये रुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
6: संघर्ष के बीच एक एहसास जो हमें मजबूत बनाता रहा, यह महापुरुषों की अनकही प्रेरणा।

साथियों, एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वह जीवन को जीने की दिशा भी दिखाता है। जी हाँ, शिक्षा वह प्रकाश है जो इंसान के भीतर ज्ञान के साथ साथ विवेक और संस्कार भी जगाती है।

0: श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपने साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को एक नए महापुरुषों के जीवन के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय को लेकर। अंजलि, कहा है कि शिक्षा वो साधन है जो मनुष्य के भीतर छिपी श्रेष्ठता को बाहर लाती है। भारत की महान परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, विचारों और कर्मों से देश को गौरवान्वित किया।
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। वे एक महान शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और भारतीय संस्कृति के सम्मान को समर्पित किया। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यह दिन केवल एक महान शिक्षक को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाले हर गुरु, शिक्षक और मार्गदर्शक के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है।
0: बिल्कुल,
1: डॉक्टर राधा कृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण है श्रोता साथियों कि साधारण परिस्थितियों से निकल कर भी व्यक्ति अपनी शिक्षा, प्रतिभा, मेहनत के बल पर देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। वहीं बात करें उनके प्रारंभिक जीवन की तो श्रोता साथियों, उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था।
0: जी हाँ,
1: सीमित संसाधनों के बावजूद उनके भीतर शिक्षा प्राप्त करने की गहरी इच्छा थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और आगे बढ़ते हुए दर्शन शास्त्र को अपना प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बनाया। उनके जीवन में सबसे पहली सीख यही मिली उन्हें जागृति जी कि संसाधनों की कमी किसी व्यक्ति की प्रतिभा को रोक नहीं सकती, यदि उसके भीतर सीखने की इच्छा, मेहनत करने का साहस हो। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों का अध्ययन किया।
0: बिल्कुल,
1: और दोनों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास किया।
0: जी हाँ अंजलि, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हमने जैसा कि पहले बताया था कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतन्नी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सितम्मा था। उनका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति वाला था जैसा कि आपने बताया अभी, लेकिन शिक्षा के प्रति परिवार में बहुत सम्मान था। राधाकृष्णन बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और अध्ययनशील थे। उन्हें पुस्तकों से विशेष लगाव था। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये तो हमने उनके जन्म और परिवार के बारे में बताया। अगर शिक्षा के प्रति समर्पण को लेकर हम बात करें तो साथियों, राधा कृष्णन ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और आगे चलकर इसी विषय के महान विद्वान बने, जैसा कि अंजलि आपने बताया था। उन्होंने भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों को गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं हो सकती, बल्कि ये व्यक्ति के चरित्र, विचार और व्यक्तित्व का निर्माण करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, डॉक्टर राधा कृष्णन का जीवन शिक्षा और अध्यापन से गहराई से जुड़ा रहा है। उन्होंने अलग अलग प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया।
0: बिल्कुल,
1: वे केवल श्रोता साथियों किताबों में लिखी बातों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों को सोचने, प्रश्न पूछने और विषय को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। वह इंसान को सही और गलत में अंतर समझने, अपने विचार बनाने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने योग्य बनाती है। आज भी ये विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अध्यापन और शिक्षा के क्षेत्र में बिताया। उन्होंने कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्यापन किया। वे अपनी सरल भाषा, गहरी सोच और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। श्रोता, उनका मानना था कि शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि वो विद्यार्थियों के भविष्य का मार्गदर्शक होता है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को सोचने, प्रश्न करने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जैसा कि अभी आपने बताया था, उनके व्यक्तित्व और शिक्षा के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर उनके विद्यार्थियों और सहकर्मियों ने उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में सम्मान दिया था।
1: बिल्कुल,
0: और वे विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी में विवेक हो, अनुशासन हो, मानवता हो, नैतिकता और राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हो।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी इस तरीके से कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। आज हम जान रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय को लेकर ढेर सारी बातों को, लेकिन क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में।
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे कि किस तरीके से राधा कृष्णन का शिक्षा के रूप में योगदान रहा, वही बात करें तो जागृति जी, आज शिक्षा का स्वरूप ही बदल गया है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे पास स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन शिक्षा का मूल उद्देश्य आज भी वही है कि ज्ञान के साथ विवेक और चरित्र का विकास। जी हाँ, डॉक्टर कृष्णन का मानना था कि शिक्षक केवल जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं, शिक्षक विद्यार्थी के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान सकता है, वह बच्चे को उसकी गलतियों से सीखना सिखा सकता है और उसे अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दे सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, शिक्षक का सम्मान केवल शिक्षक दिवस के दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन किया जाना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, शिक्षक दिवस की इस शुरुआत को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें तो श्रोताओं, डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तब उनके कुछ विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उन्होंने कहा कि अगर उनके जन्मदिन को मनाना है तो इसे शिक्षकों के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाए। इसी भावना के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो साथियों ये तो हमने आपको बताया कि शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई। यही महान दार्शनिक और लेखक के बारे में बात करें तो डॉक्टर राधा कृष्णन केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, उनकी रचनाओं में भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ दिखाई देती है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया अंजलि कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि आधुनिक विश्व को भी मानवीय मूल्य और आध्यात्मिक दृष्टि का मार्ग दिखा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: उनका लेखन भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण रहा।
1: बिल्कुल जागृति जी, डॉक्टर राधा कृष्णन का मानना था कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका बहुत जरूरी है। सड़कें, इमारतें, तकनीक देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इन सब के पीछे ऐसे शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक भी जरूरी हैं जो इन संसाधनों का सही उपयोग कर सके। एक शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों को समझता है, अपने कर्तव्यों को पहचानता है और लोकतंत्र की जिम्मेदारी से भाग लेता है। इसलिए शिक्षा केवल व्यक्ति का भविष्य नहीं बनाती बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य तैयार करती है। इसलिए श्रोता साथियों, विद्यालय की कक्षा में तैयार होने वाला विद्यार्थी ही कल के समाज और राष्ट्र का निर्माण बनता है।
0: बिल्कुल,
1: राधा कृष्णन केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, जैसा कि आपने बताया। यही बात करें भारतीय संस्कृति और मानवता का क्या संदेश है तो श्रोता साथियों, उनका चिंतन हमें बताता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं बल्कि समाज के लिए उपयोगी बनना भी है। आज जब दुनिया में तनाव, असहिष्णुता और विभाजन जैसी चुनौतियां दिखाई देती हैं।

0: करते हुए देश की सेवा की। उनका व्यक्तित्व राजनीति से अधिक ज्ञान, शिक्षा और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक या सैन्य क्षमता में नहीं होती, बल्कि उसके चरित्रवान और शिक्षित नागरिक में होती है।
1: बिल्कुल।
0: राष्ट्रपति पद के बारे में बताएं, यही उपराष्ट्रपति के बारे में बताएं, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वे 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। श्रोता, उनकी विद्वता, विनम्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उन्हें देश विदेश में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ।
1: बिल्कुल जागृति जी, बात करें शिक्षक के संदेश की, तो श्रोता साथियों, आज शिक्षक की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बच्चों के पास जानकारी के अनेक स्रोत हैं। इंटरनेट पर कुछ ही सेकंड में हजारों जानकारी मिल जाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हर जानकारी सही हो जरूरी नहीं है। ऐसे समय में शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने की नहीं, बल्कि बच्चों को सही जानकारी पहचानना, सवाल पूछना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना सिखाने की भी है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों के भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। वह कमजोर विद्यार्थियों को भी यह विश्वास दिलाता है कि मेहनत से वह आगे बढ़ सकता है। बच्चों के जीवन में माता पिता के बाद शिक्षक जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिक्षक बच्चों की प्रतिभा पहचानते हैं, वह उन्हें अनुशासन सिखाते हैं, समय का महत्व समझाते हैं और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई बार शिक्षक का एक छोटा सा प्रोत्साहन बच्चों के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को भी अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान का अर्थ केवल शिक्षक दिवस पर उपहार देना नहीं, शिक्षक की बात ध्यान से सुनना, समय पर कार्य पूरा करना, अनुशासन में रहना और जीवन में अच्छे मूल्यों को अपनाना भी शिक्षक के प्रति सच्चा सम्मान है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन युवाओं को यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को सर्वोच्च महत्व दिया और लगातार सीखते रहने की प्रेरणा दी। लंबे समय तक शिक्षा, दर्शन और राष्ट्र सेवा में योगदान देने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हो गया। उनका भौतिक जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विचार और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं।
1: बिल्कुल।
0: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन ज्ञान, शिक्षा, विनम्रता और राष्ट्र सेवा का अद्भुत उदाहरण है। श्रोताओं, उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक सच्चा शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पढ़ाता नहीं, बल्कि उनके जीवन को दिशा देता है। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति को विश्व के सामने सम्मान के साथ प्रस्तुत किया अंजलि, और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना।
1: बिल्कुल।
0: उनका जीवन हमें संदेश देता है कि ज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन सही ज्ञान हमें सही दिशा भी देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन एक अच्छा शिक्षक उस ज्ञान को जीवन में उतारना सिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, शिक्षक का सम्मान करें, शिक्षकों का आदर करें और हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर दें, क्योंकि शिक्षित बच्चा केवल अपना भविष्य नहीं बनाता, वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य भी बनाता है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, हमने जाना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय को। अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

एक बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में यही कहना चाहेंगे कि हमें केवल अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं नहीं देनी चाहिए बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना होगा और यही डॉक्टर राधा कृष्णन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागा रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम कथा कहानी को एक नई शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ और इस कहानी का शीर्षक है भाई बहन का अटूट रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी अभी हमारे बीच में रक्षाबंधन त्योहार गया है और रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा के लिए वचन देते हैं। यह भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं भाई बहन के रिश्तों के बारे में, उनके महत्व के बारे में। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं भाई और बहन का पहला प्यारा सा गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।

गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज हमारा रविवार का दिन है और आज ही के दिन मैं प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक भी मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि आज हम जानने वाले हैं भाई बहन के अटूट रिश्ते के बारे में। ये अटूट रिश्ते की लंबी और प्रेरणादायी कहानी है जो संघर्ष के साए में रोशन उम्मीद है। साथ ही भाई बहन का रिश्ता इस सृष्टि के सबसे पवित्र अनमोल भावनात्मक बंधनों में से एक है, ये हम सभी जानते हैं। ये केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि दो आत्माओं के बीच का एक ऐसा अटूट अनुबंध है जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक दूसरे की ढाल बनता है। बचपन के निर्दोष शैतानियों से लेकर जवानी के कड़े इम्तिहानों तक भाई बहन का ये सफर इस बात का प्रमाण श्रोता कि इंसान को जीवन में कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें बिना किसी शर्त या स्वार्थ की केवल परवाह और स्नेह की महक होती है। तो आइए साथी सुनते हैं कार्यक्रम कहानी को। कहानी शुरू होती है इस तरह से। श्रोताओ, एक शांत और छोटे से गांव में मदनपुर नाम की जगह पर दो बच्चे रहते थे जिनका नाम था क्षितिज और नंदिनी। क्षितिज 14 वर्ष का था और नंदिनी उससे 4 साल छोटी यानी कि 10 वर्ष की थी। उनके पिताजी गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय में चपरासी थे और माताजी घरों में सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह घर का चूल्हा जलाती थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी श्रोताओ, लेकिन बच्चों की आंखों में सपनों की कोई भी कमी नहीं थी। क्षितिज पढ़ाई में बहुत होशियार था और गणित के सवालों को चुटकियों में हल कर देता था। वहीं नंदिनी की बात करें तो नंदिनी को चित्रकला और कहानियां लिखने का बहुत ही शौक था। दोनों भाई बहन में एक गजब का अपनापन था। क्षितिज अपनी छोटी बहन नंदिनी का साया की तरह ध्यान रखता था और स्कूल जाते वक्त उसके फटे हुए जूतों को सिलाई करके ठीक कर देता था। उसके बस्ते में अपनी तरफ से एक मीठी टॉफी छुपा देना क्षितिज की रोज की आदत थी। साथ ही वक्त का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। क्षितिज अब 11वीं कक्षा में आ गया था और नंदिनी 7वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। एक दिन जब क्षितिज स्कूल से घर लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर के कुछ लोग इकट्ठा हैं। अंदर जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिताजी को खेत में काम करते समय अचानक दिल का दौरा पड़ा था और वे इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे। इस अचानक हुए आघात ने उस परिवार की कमर तोड़ कर रख दी थी। कमाने वाला इकलौता सदस्य अब इस दुनिया में नहीं था। माँ का तो रो कर इतना बुरा हाल था। घर में खाने के नाले पड़ने लगे थे। गांव के कुछ साहूकारों का कर्ज सिर पर अलग से मंडरा रहा था और ऐसे में रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। श्रोताओ, परिस्थितियों का दबाव इतना बड़ा कि क्षितिज के सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों ने सलाह दी, अरे क्षितिज, अब पढ़ाई लिखाई का बहुत उतार दो। तुम बड़े हो, शहर जाओ और किसी कारखाने में मजदूरी करो, तभी तुम्हारे घर का चूल्हा चलेगा और तुम्हारी बहन की शादी का जुगाड़ होगा। क्षितिज अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने सारे सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी बस यहीं तक सीमित रह जाएगी। एक रात जब पूरा घर गहरे नींद में था, क्षितिज घर के आंगन में बैठकर फुटफुट कर रो रहा था। साथ ही अचानक उसे अपने कंधों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने नंदिनी खड़ी थी। नंदिनी की आंखें भी नम थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। नंदिनी ने अपने छोटे छोटे हाथों से क्षितिज के आंसू पहुंचे और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, भैया आप रो क्यों रहे हो? क्या आपको पापा का वो सपना याद नहीं जो वे रोज रात को मुझे सुनाते थे? वे कहते थे कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। अगर आज आपने हिम्मत हार दी तो पापा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्षितिज ने अपनी बहन को देखा और उसे अपने गले से लगा लिया। उस छोटी सी बच्चे के शब्दों ने क्षितिज के भीतर राख बन चुकी उम्मीद को फिर से धड़कती हुई आंख में बदल दिया था। दोस्तों, अगले ही दिन से क्षितिज ने अपनी जिंदगी की नई जंग शुरू कर दी। उसने सुबह के वक्त गांव के बाहर एक दूध के डेरे पर दूध पहुंचाने का काम शुरू किया। दिन में स्कूल जाता और शाम को घर आकर नंदिनी को पढ़ाता था। नंदिनी ने भी अपने भाई का साथ देने के लिए घर का सारा काम काज अपने हाथों में ले लिया। उसने माँ के साथ मिलकर कपड़ों की सिलाई में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रास्तों में कांटे बहुत थे दोस्तों, और अक्सर कहते हैं कि जब परिस्थितियाँ बुरी होती है तो रास्ते में कांटे बहुत आते हैं। पैर कई बार लहूलुहान हुए लेकिन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। जब भी क्षितिज को थकान महसूस होती, नंदिनी उसके माथे पर हाथ फेरकर उसे प्रेरित करती, और जब कभी नंदिनी उदास होती, क्षितिज उसे अपनी सफलता की
किस्से सुनाकर हंसा देता था। कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास के साथ समर्पित कर श्रोताओं, क्षितिज ने अपने लगन के दम पर न केवल 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया बल्कि स्कॉलरशिप के सहारे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद उसने संघ लोक सेवा आयोग UPSC की कठिन परीक्षा की तैयारी शुरू करी और अपनी पहली ही कोशिश में शानदार रैंक के साथ IAS अधिकारी बन गया। दोस्तों, जिस दिन क्षितिज के चयन का परिणाम आया उस दिन पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल था। क्षितिज ने सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए और उसके बाद अपनी बहन नंदिनी को अपनी बाहों में भर कर टपक पड़ा। नंदिनी की आंखें भी खुशी के आंसुओं से नम थी। उसी वर्ष नंदिनी ने भी अपनी मेहनत के दम पर अपनी पढ़ाई पूरी कर एक बेहतरीन लेखिका और प्रोफेसर के रूप में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, आज वे दोनों भाई बहन जिस मुकाम पर थे वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कांटेदार था, लेकिन उनके आपसी प्रेम और विश्वास ने हर बाधा को धूल चटा दी थी। और ये कहानी हमें संदेश देती है कि जीवन की मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर भाई बहन का अटूट साथ और एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो तो इंसान शून्य से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। ये रिश्ता खून का तो होता ही है, साथ ही आत्मा का भी होता है। और आत्मा का एक ऐसा बंधन है जो जीवन के हर अंधेरे को चीर कर उजाला ले आता है। इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे इस कहानी के माध्यम से कि मुसीबतों के तूफानों से जो कभी डगमगाए ना, भाई बहन का ये पावन रिश्ता कभी टूट पाए ना। जब हौसले बुलंद हो और अपनों का साथ हो तो हर नामुमकिन मंजिल को भी अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भाई बहन का अटूट रिश्ता। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई, वह मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं।

इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और गीत से पहले मैंने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी भाई बहन की अटूट रिश्ते को लेकर। वहीं आपसे कहना चाहूंगी कि खून का रिश्ता तो कुदरत की एक सौगात है, पर हर मुश्किल को आसान बना देना भाई बहन के प्यार की बात है। जब दुनिया साथ छोड़ दे और रास्ते हो जाए बंद, तो भाई बहन का साया बनता है सबसे मजबूत प्रबंध। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगी कि इस संसार में जितने भी रिश्ते ईश्वर ने बनाए हैं, वहीं भाई बहन का रिश्ता हम देखते हैं कि सबसे अनोखा होता है, सबसे पवित्र होता है और भावनात्मक रूप से सबसे मजबूत भी होता है। जैसे क्षितिज और नंदिनी का था, ये रिश्ता केवल दो शरीर या दो इंसानों का मिलन नहीं दोस्तों, बल्कि ये दो आत्माओं का एक ऐसा पवित्र बंधन है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त और बिना किसी दिखावे के केवल प्रेम और समर्पण पर टिका होता है। बचपन की कोमल स्मृतियों से लेकर जीवन की ढलती उम्र तक भाई बहन का ये साथ इंसान को हर कदम पर संबल प्रदान करता है और ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके साय में व्यक्ति खुद को दुनिया की हर मुसीबत से सुरक्षित महसूस करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूंगी साथियों कि निस्वार्थ प्रेम और स्नेह दुनिया का हर रिश्ता कहीं न कहीं किसी न किसी उम्मीद या स्वार्थ से बंधा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि भाई बहन का रिश्ता इसका अपवाद है। यहाँ भाई अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटता और बहन अपने भाई की सफलता के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है। बचपन की खट्टी मीठी यादें, चॉकलेट के एक टुकड़े के लिए झगड़ना, टीवी के रिमोट पर अधिकार जमाने के लिए तकरार करना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए एक दूसरे का ढाल बन जाना, ये सब इस रिश्ते की अमूल्य धरोहर है और ये यादें जीवन भर हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। मानसिक और भावनात्मक संबंध जब इंसान जीवन में अकेला पड़ जाता है दोस्तों, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता, तब भाई या बहन की एक आवाज, तो चिंता मत कर मैं हूँ तेरे साथ, व्यक्ति के भीतर एक नया पहाड़ जैसा हौसला जगा देती है। भाई बहन के लिए साथी नहीं होते बल्कि सबसे अच्छे आलोचक और मार्गदर्शक भी होते हैं, जैसे कि नंदिनी क्षितिज के लिए थी और क्षितिज नंदिनी के लिए। वे बिना किसी लाग लपेट के हमारी गलतियों का आईना हमें दिखाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों कि जीवन हमेशा एक जैसी गति से नहीं चलता, वहाँ सुख और दुख दो परछाओं की तरह आते जाते रहेंगे। जब किसी परिवार पर अचानक कोई आर्थिक संकट आ पड़ता है, जैसे क्षितिज पर और नंदिनी पर आया था, या कोई विपत्ति सिर उठाती है, तब सबसे पहले भाई बहन एक दूसरे की रीढ़ बनते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घर की परिस्थितियों के कारण बड़े भाई को अपनी उच्च शिक्षा अधूरी छोड़कर आजीविका के संघर्ष में उतरना पड़ता है, तो छोटी बहन घर की चार दीवारी के भीतर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ संभालती है। और यही आपसी तालमेल और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना ही है जो बड़ी से बड़ी आंधी को भी थाम लेती है। इसलिए भाई बहन का रिश्ता एक ऐसी चट्टान की तरह है जिस पर समय के थपेड़ों, आंधियों और तूफानों का कोई असर नहीं पड़ता। ये रिश्ता हमें सिखाता है दोस्तों कि जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि अपनों का साथ और अटूट विश्वास हमारे पास है, तो हम किसी भी हार को जीत में बदल सकते हैं। ये बंधन जन्म जन्मांतर का एक ऐसा सफर है जो जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। और कहा भी गया है दोस्तों कि मुसीबतों के तूफानों से जो कभी डगमगाएगा, भाई बहन का ये पावन रिश्ता कभी टूट पाए ना। जब हौसले बुलंद हो और अपने का साथ हो, तो हर नामुमकिन मंजिल को भी अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन की मुश्किलें कितनी बड़ी क्यों न हो, अगर भाई बहन का अटूट साथ और एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो, तो इंसान शून्य से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। ये रिश्ता खून का तो होता ही है, साथ ही ये आत्मा का एक ऐसा बंधन है जो जीवन के हर अंधेरे को चीरकर उजाला ले आता है। तो दोस्तों ये थी कहानी और इससे जुड़ी कुछ बातें। अब समय का मान रखते हुए विदा लेना होगा, पर जल्दी जल्दी सुन लेते हैं।

इसी गीत के साथ साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम और भाई बहन से भरे ये गीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी नागर रेडियो 90.8 FM पोस्ट कोपरा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327601। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vakthara.org। तो साथ ही फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी। आ गई हूँ फिर से कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को आपको कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में कुछ नई नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। तो जैसा कि आज भी रविवार का दिन है, तो आज भी कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नई कहानियाँ। बच्चों वो कहानियाँ कौन सी होने वाली है ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम गीत संगीत के साथ पहले मनोरंजन करते हैं, फिर मैं आपको

बताऊंगी कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे कौन सी कहानियाँ रहने वाली है। तो बच्चों, मजा बहुत आएगा कार्यक्रम में, लेकिन शुरुआत में पहले सुनते हैं हम कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में।

0: वेलकम बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में। जैसा कि बच्चों, गीत संगीत तो कार्यक्रम में हमारे आपसे चल ही रहे हैं, तो अब मुझे आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातचीत की पहली कहानी कौन सी रहने वाली है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में जो कहानी मेरी आपसे रहने वाली है उसका नाम है चुटकी और जादुई जंगल की खोज। है ना बिल्कुल अनोखा नाम बच्चों? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है। बच्चों, चुटकी का अनोखा दिन, यानी कि चुटकी एक प्यारी सी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। बच्चों, उसका सबसे बड़ा शौक था पेड़ पौधों और जानवरों के साथ खेलना। बच्चों, हर सुबह वह जंगल के पास जाकर वहाँ की ताजगी का आनंद लेती थी। एक दिन क्या हुआ, जब चुटकी अपने दोस्त मोंटू के साथ जंगल में खेल रही थी, उसे एक पुराना और रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे पर रंगीन पेड़ों, चमकते सितारों और अजीब से झील का नाम लिखा हुआ था। बच्चों, चुटकी के दोस्त मोंटू ने उत्सुकता से पूछा, अरे चुटकी, ये क्या है? चुटकी ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोली, मुझे लगता है कि यह किसी जादुई जगह का नक्शा है। तुम क्या कहते हो, हमें इसे खोजना चाहिए। अगले दिन बच्चों, सुबह चुटकी और मोंटू और उनका पालतू खरगोश बबलू नक्शे को लेकर जादुई जंगल की खोज पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई मजेदार चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेड़ों पर झूलती हुई तितलियाँ, गाते हुए पक्षी और बोलने वाला तोता। बच्चों, उनको देखकर तोता बोलता है, तुम जादुई जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें तीन पहेलियाँ हल करनी होगी। तो चुटकी ने पूछा कि वो तीनों पहेलियाँ क्या है। तो तोता बोला, सबसे पहले पहली सुलझाओ। बच्चों, उसने कहा, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं? मोंटू ने सोचा, बोला, वक्त। हाँ, जवाब है वक्त। बच्चों, फिर तोता मुस्कुराया और बोला, सही जवाब, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर क्या हुआ बच्चों? रास्ते में चुटकी और उसके दोस्तों ने एक नन्हे भालू को देखा जो पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। चुटकी ने तुरंत अपने पास रखी दवा से उसकी मदद की। भालू, जिसका नाम गोलू था, उनकी मदद से वो बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें जादुई जंगल का रास्ता दिखा सकता हूँ। बच्चों, आगे बढ़ते हुए वे एक चमकती हुई झील पर पहुँचे। वहाँ एक बोलती हुई मछली मिली। मछली ने कहा, अगर तुम इस झील को पार करना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि किस चीज का स्वाद सबको अच्छा लगता है लेकिन दिखने में नहीं होती। बच्चों, ये सुनकर चुटकी के मन में सबसे पहले जवाब आया। उसने कहा, ज्ञान। फिर क्या हुआ? मछली ने मुस्कुराकर रास्ता खोल दिया। बच्चों, जब वे जादुई जंगल की सीमा पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे, पक्षी गाना गा रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। लेकिन तभी एक बड़ा बंदर आया और बोला, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी पहेली का जवाब देना होगा। बंदर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देती है? अब तो बच्चों मोंटू और गोलू सोच में पड़ गए, लेकिन चुटकी को भी यह बात समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देती है। इतने में वो सोच ही रहे थे कि चुटकी ने जवाब दिया, क्या वह समय है? बच्चों, बंदर ने हंसते हुए उन्हें आगे जाने दिया, यानी कि यह सही जवाब था। फिर क्या हुआ, जंगल के अंदर उन्हें पता चला कि वहाँ के जानवर एक दुष्ट जादूगर के कारण परेशानी में थे। जादूगर ने जंगल के सारे पानी के स्रोतों को बंद कर दिया था। बच्चों, चुटकी ने अपने दोस्तों के साथ जानवरों की इस समस्या को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। फिर क्या हुआ, गोलू और बबलू ने जादूगर का ध्यान भटकाया। मोंटू ने उसके महल के गेट खोले और चुटकी ने जादुई नक्शे की मदद से उसके पानी के स्रोत को खोल दिया। बच्चों, जैसे ही पानी बहने लगा, जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। जादूगर ने चुटकी से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। बच्चों, जंगल ने चुटकी और उसके दोस्तों को एक चमकता हुआ जादुई सितारा दिया जो कि उनकी बहादुरी का प्रतीक था। फिर क्या हुआ, चुटकी, मोंटू और गोलू खुशी खुशी अपने गांव लौट गए। उन्होंने ये सीखा बच्चों कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी, चुटकी और जादुई जंगल की खोज। इस कहानी से हमें ये सीख मिली बच्चों कि हर मुश्किल का हल तो मिल सकता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो। और हमें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। यानी कि बच्चों, ये कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी, क्योंकि इस कहानी से हमें एक चीज ये भी सीखने को मिली कि अगर हमें किसी भी मुश्किल को पार करना है तो उसके लिए हमें धैर्य का उपयोग भी करना होगा। यानी कि हमारे पास में धैर्य की क्षमता भी होनी चाहिए। बच्चों, हमने देखा कि अगर तोते की पहेली का जवाब चुटकी और मोंटू धैर्य के साथ नहीं देते तो शायद उस पहेली का जवाब उन्हें नहीं पता होता। तो ऐसे हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें हमेशा अपनी मुश्किलों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। तो जैसा कि बच्चों, ये कहानी तो हमारी पूरी हो गई। अब मुझे आपको मेरी दूसरी कहानी के बारे में बताना है। तो दूसरी कहानी के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में, और सुनते रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM।
1: चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकि चक चो गिलिगिलि मल सुलु सुलु मल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलि सिलि सिलिगो बगडुम जगडुम चिकि चक चो।

बच्चों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने चुटकी और जादुई जंगल की खोज की कहानी के बारे में जाना था, अब यहीं बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। बच्चों हमारी दूसरी कहानी का नाम है जादुई पेंसिल और टिंकू का कारनामा। यानी कि बच्चों टिंकू एक छोटे से गाँव में रहता था। वह बहुत ही शरारती था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। आपको बताऊं तो पढ़ाई में वह ज्यादा तेज नहीं था और हमेशा अपनी कॉपी किताबों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनाया करता था क्योंकि इसी में उसको खुशी मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, स्कूल से लौटते समय उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे बैठे देखा। देखने में तो वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। बच्चों टिंकू ने उससे पूछा, दादाजी क्या मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने टिंकू को एक सुनहरी पेंसिल दी और कहा, यह पेंसिल जादुई है, तुम इसका इस्तेमाल ध्यान से करना। बच्चों टिंकू ने उस पेंसिल को हाथ में ले लिया और खुश होकर अपने घर पर आ गया। अगले दिन क्या हुआ, जब टिंकू स्कूल में अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था तो उसने देखा कि जो कुछ वह लिख रहा था वह सच हो रहा था। उसने एक पतंग का चित्र बनाया और अचानक से वह देखता है कि उसकी कॉपी से एक असली पतंग निकलकर उड़ने लगी। बच्चों टिंकू ये सब देखकर खुश तो था लेकिन उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। अब टिंकू ने अपनी जादुई पेंसिल से गांव के लोगों की मदद करने का सोचा। वो जो भी चीज बनाता वह सच होती जाती थी। अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता था तो वह उनके लिए खाना बनाता, और अगर किसी के पास कपड़े नहीं होते तो वह उन्हें कपड़े भी बना कर दे देता था। लेकिन बच्चों टिंकू के दोस्तों को जब पेंसिल के बारे में पता चला तो उनमें से कुछ ने इसका गलत फायदा उठाने की सोची। उन्हीं में से एक था मोनू, जो टिंकू का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने टिंकू की पेंसिल चुरानी चाही। उसने सोचा कि वह पेंसिल से अपने लिए ढेर सारा सोना बनाएगा। उसने सोने के सिक्कों का चित्र बनाया लेकिन बच्चों वह देखता है कि पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, पेंसिल पर से एक छोटा सा संदेश ऊपर की ओर दिखाई देने लगा। उसमें लिखा था कि यह पेंसिल केवल अच्छे कामों के लिए बनाई गई है। बच्चों ये पढ़कर मोनू को अपनी गलती

का एहसास हुआ और उसने टिंकू से माफी मांगी। तब से बच्चों टिंकू को पता चल गया कि उसे इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना है। फिर टिंकू ने पेंसिल का सही इस्तेमाल करने की ठानी। उसने गांव में एक बड़ा खेल का मैदान बनाया जहां बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे। उसने गांव में एक पुस्तकालय भी बनाई ताकि बच्चे वहां जाकर किताबें पढ़ सके। बच्चों धीरे धीरे टिंकू का गांव खुशहाल बन गया और जादुई पेंसिल की बदौलत हर कोई खुश था। लेकिन टिंकू को यह समझ में आ गया था कि असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि इरादों और मेहनत में होती है। एक दिन जादुई पेंसिल ने आखिरी बार कुछ लिखा, अब मेरा काम पूरा हुआ। टिंकू, तुमने सच्चे दिल से दूसरों की मदद की, अब यह जादू तुम्हारे अंदर है। और फिर बच्चों पेंसिल धीरे धीरे गायब हो गई। टिंकू अब समझ गया था कि जादू असली नहीं बल्कि मेहनत और अच्छे कामों का परिणाम होता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी, जादुई पेंसिल और टिंकू का कारनामा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि सच्चा जादू हमारी अच्छाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है, ना कि किसी चीज में। तो जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे कहानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं बच्चों, जैसा कि हमने दो कहानियों के माध्यम से ये जान लिया, ये जो कहानियाँ होती है वो हमारे लिए कितनी प्रेरणादायी होती है। और अगर इन कहानियों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल रूप से जी सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों कहानियाँ हमारी आपसे पूरी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं यहाँ पर एक और गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

प्यारे बच्चों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के कार्यक्रम में जो भी कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, बागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, ये मुलाकात हमारी आपसे फिर होगी अगले रविवार को कुछ नई कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अब आपकी दीदी कशिश दीदी को आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। बाय बाय बच्चों।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, मुश्किलों से घबराना नहीं, हर कदम आगे बढ़ते जाना है। मेहनत को अपना साथी बनाकर सपनों को हकीकत में बदल जाना है।

0: साथी और जुड़े परिश्र स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों आप सब सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉग रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारा मेहमान है, जब भी हम हर रविवार को जुड़ते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नए शख्सियत को जुड़ते हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए शख्सियत जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातों को, फिर हम हमारी बातों को आगे जारी रखेंगे।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वागर रेडियो परिवार में।
2: जी मैम।
1: जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: मेरा नाम गौतम लाल बरगोट है, मुकाम पोस्ट रुंजा है, तहसील काटू जिला बांसवाड़ा का हूँ।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने आपका नाम और आपका परिचय हमें बताया, तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसे बीता, उसके बाद क्या किया आपने, और अभी आपका जीवन जो है वो किस तरीके से बदला।
2: बचपन में तो मैम हमने बहुत परिस्थिति देखी है, जैसे खाने के लिए अनाज की बहुत मुश्किल था, जिसमें क्या हमने कहीं कहीं पर अरहर को सुखा के फिर खाना खाया।
1: बिल्कुल।
2: रोटी बना के और कई जगह हमने भूखे भी रहे। उसके बाद इतनी परिस्थिति में भी हमने शिक्षा ग्रहण की।
1: जी जी।
2: यहाँ से मैंने बड़ी शैली भी शिक्षा ग्रहण की और वहाँ पर जब अभी सीनियर में ये बच्चों के लिए आ रहा है विज्ञान, जैव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये रासायनिक विज्ञान, ये सब ये, और ये वो शिक्षा मैंने छठी में ग्रहण की।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद धीरे धीरे मैंने शिक्षा ग्रहण करते हुए मैंने ये बड़ी शैली की। उसके बाद ये अपने यहाँ घाटोल आया।
1: बिल्कुल।
2: घाटोल में मैंने सातवीं में क्लास में एडमिशन लिया। नाइन्थ में पास करने के बाद एक एग्जाम निकला था, जैसे निम्बाड़ा करके चेन्नई वाला।
1: जी जी।
2: तो उसमें मैंने भाग लिया। तो भाग लिया तो वहाँ पर जैसे हमारा दौड़ भी हुई, दौड़ हुई, उसके बाद जैसे घुटनों पे हम दौड़े, घुटनों पे दौड़ने के बाद अपना क्या पूरा सामान पूरा शरीर
1: तोड़ना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
2: ये सब करके हमने वहाँ पर मैं सफल रहा। वहाँ पर सफल रहने के बाद मेरे पिताजी क्या वो पहले इतनी सारी जो बातें जानते थे, जैसे मिडिल ग्रेड में जाना बहुत कठिन काम था।
1: बिल्कुल।
2: तो उसमें क्या कारगिल वाला युद्ध चल रहा था, उसमें तो उसमें क्या हमारे पिताजी मना कर दिया, यहाँ जाने ने अपने बेटे को खोना नहीं।
1: बिल्कुल।
2: तो मैंने तो भी कहा कि मैं जाऊंगा यूँ, कई बार वहाँ से आगे लेटर आया, लेटर आने के बाद भी मैंने कहा मैं जाऊँ, तो हमारे भाई ने और सबने मना कर दिया।
1: बिल्कुल।
2: फिर उस लेटर पे मैंने क्या किया कि एक नोटरी करवाई, नोटरी करवा के वापस जमा करवा दिया, और मेरे साथ में जो बच्चे लड़के थे और तो उन्होंने नोटरी जमा नहीं करवाई, तो उनको बाद में रह के उनके आयु पूरी होने पर भी जरूरत पड़ी कारगिल की, तो उनको खेतों में हल चलाते हुए भी ले गए।
1: बिल्कुल।
2: तो इसी स्थिति पे फिर बाद में मैंने धीरे धीरे फिर विचार किया अब क्या करना रहा मेरे को, खेती का काम करते करते फिर कलर का काम करता था मार्केट में।
1: बिल्कुल।
2: जब पहली बार बाइप आई तो बाइप में मैंने विचार किया उनको ऑफिस का काम करने पर, ये आम आप लाए तो क्या करना है, उनका हम हर किसान को देंगे, क्यों ना हमारे को एक आम दे दो, अरे आम क्या दे पूरा खेत लगाएंगे। मैंने कहा चलो फिर मेरा गांव ले लो, मेरा गांव दिलाया, यहाँ के सर्वे करके वो पूरा काम किया। मैंने उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, जब मैं बाइप में जुड़ गया, बाइप में जुड़ने के बाद जैसे कुपोषण बच्चे थे तो उसके लिए गेहूँ चने गुड़ और सिंगदाने ऐसे प्रकार से मतलब पोषण मतलब ये बनाया था हमने बच्चों के हेल्थ के लिए। तो छोटे बच्चे जीरो से लगा कर तीन साल के बच्चे के लिए मतलब 3 किलो प्रसाद देना, ये प्रोग्राम चालू किया। उसके बाद हमने फिर ये फ्लॉक करवाया, गायों का ये करवाया, बीज का करवाया, उसके बाद बाड़ी को निगरानी का हमने समिति बनाई गांव के स्तर पे, और एसएसजी बनाई, फिर महिलाओं का एसएसजी बनाने पर महिलाओं को भी फिर लाभ मिलने लगा। हमारे गांव में जैसे कम सुधार था, बाकी उन भाई पाने पर वो थोड़ा और सुधार हुआ।
1: बिल्कुल।
2: और बागड़ के पैसे भी मिले उसमें, जैसे वृक्ष लगाए उसके भी पैसे मिले।
1: जी जी।
2: उसके बाद हमने फिर विचार किया अब क्या करना रहा है, जब बाइप का टाइगर रहता है समय पे बाइप हमको छोड़ के चली गई।
1: बिल्कुल।
2: बाइप छोड़ के चली गई, उसमें नाबार्ड के प्रति हमने विचार किया अब क्या करना रहा, हमारे गांव तो थोड़ा जागरूक हुआ है।
1: बिल्कुल।
2: अब क्या करना रहा है, जब हमने नाबार्ड से जुड़े 230 हमने किसान क्लब बनाए पूरे फील्ड में रहते।
1: बिल्कुल।
2: 230 किसान क्लब बनाए, उसके बाद हमने अच्छा काम करा, यूं करके फिर हमारे को एक वहाँ पर स्वीकृति मिली, तो हमने फेडरेशन बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से। तो वो और उसके बाद हमने फिर का विचार किया हमारा आसड़ा जिला तौर भी ठीक है, थोड़ा अच्छा प्रोग्राम से असर है, और अपन भी एक किसान को फोन करे ताकि वो पूरा गांव का बात हो जाए, ऐसा संगठन बनाया। उसके बाद फिर हमने विचार किया कि यह क्यों नहीं डूंगरपुर जाइए। तो जब मैंने धीरे धीरे उन लोगों ने विचार किया ये अच्छा वर्कर है, आदमी है, अच्छा काम करने वाला है, तो मुझे 8 ब्लॉक बांसवाड़ के दिए और 5 ब्लॉक डूंगरपुर को दिए। तो 13 ब्लॉक में मैंने मेरे पास बाइक भी नहीं थी, बाकी 13 ब्लॉक में घर घर घूम घूम के मैंने ये काम किया। उसके बाद में जैसे किसी कारणवश नाबार्ड वो थोड़ा साइड में रह गई, तो जस्ट में ये वाकदरा गई, तो वाकदरा ने फिर विचार किया गया, साइड में घूमती रही, अब हमारे वाकदरा तक पहुंचे नहीं हम तो। फिर धीरे धीरे कोई सी बंदे ने फिर कहा गया इस गांव में फॉलोअप करने के लिए इस व्यक्ति को जोड़ा उसमें वाकदरा में। वाकदरा में जुड़ने के बाद मैंने विचार किया जो काम तो वही था, जैसे नाबार्ड का करो बाइक का करो काम तो वो एक ही है। फिर हमने विचार किया चलो यार जो भी काम करेंगे वो अपने परिवार के लिए करेंगे और अपने समाज के लिए करेंगे और अपने जीवन के लिए करेंगे। इसी लक्ष्य के आधार पर हमने 2016 से प्रवेश लिया वाकदरा में। उसके बाद हमने विचार किया अब कैसे करें, पहले पहले सब गांव में बैठक करवा के सब लोगों को सक्षम समूह बनाए, ऐसे ऐसे छोटी छोटी टुकड़ी में वाकदरा को फॉलो करने के पर अब किसी लोगों का कोई समस्या आ रही है, किसी की क्या आ रही है, फिर जैसे समस्या नरेगा की आती है,
1: बिल्कुल
2: नरेगा की समस्या आई, तो हमने फिर विचार किया अब क्या करना था, अपने संगठन के ऊपर आई था, अपन संगठन ने क्यों ने संगठन को आगे बढ़ाई,
1: बिल्कुल
2: इस समस्या को आगे बढ़ाई, क्योंकि पहले लोग हमारे किसी कार्यालय में जाने के लिए डरते थे
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि कार्यालय में अब जाए तो अधिकारी क्या बोलते क्या नहीं बोले यूं। फिर हमने विचार किया अपन चलो 15-20 लोग मिल के चले गए वहाँ पंचायत समिति में, विकास अधिकारी बैठा था उसको सर हमारा ये समस्या आई पंचायत में बजट नहीं तो क्या करना रहा, तो विकास अधिकारी ये फुल टीम आई है तो अब क्या करना रहा, तो हमने 110 लोगों का आवेदन करवाया लेके गए थे,
1: बिल्कुल
2: 6 नंबर फॉर्म भर के लेके जाके फिर उन्होंने हमारे को सर रोजगार देना पड़ेगा, तो विकास अधिकारी का बजट तो नहीं है कोई बात नहीं, किसी और फंड पड़ा था और फंड के माध्यम से मतलब उन्होंने निकल के 80 लेबर निकाली, तो 80 लेबर को रोजगार मिल गया। फिर विचार किया अपने गांव में और भी कमी है, चलो क्यों नहीं ये माई किनाल वाला जर्जर है, चलो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो वाकदरा को साथ में रखे फिर हमने माई किनाल का वो ज्ञापन दिया और उसके पीछे जैसे हल लग गया, हल जो होते हैं तो पहले से पीछे बैलों के पीछे लाठी लेके खड़े रहते हैं, इसी प्रकार सरकार को हमने अवगत कराया, तो ये हमारा जर्जर किनाल वाला था वो भी हमने हमारे संगठन के द्वारा वो भी करवाया। अब 2011 से 2011 में सर्वे हुई खाद्य सुरक्षा वाली, उसके बाद 2002 में हुई, तो उसमें फिर विचार किया अब उसमें से सरकार ने बैन लगा रखा था किसी का नाम जोड़ना किसी का क्या करना वो सब बंद था, हमने विचार किया अब क्या करना था। हमारे संगठन का एक बैठक हमने अलग से सक्षम समूह और ये छोटे छोटे बैठक है, बाकी एक संगठन बनाया हुआ है कृषि स्वराज
1: संगठन,
2: तो उसमें वो बात हमने रखी और उस बात को फिर सभी ने मिलकर एक क्लब किया मतलब क्यों नहीं इसकी चीज को आगे बढ़ाई, तो उसमें हमारे को क्या बात हम सब जानते हैं, बाकी थोड़ा हमारे पास क्या कागज बनाने में दिक्कत आती है। फिर हमने वाकदरा का सहयोग लिया, हमने ये काम कर कैसे करेंगे, तो उनके फील्ड वर्क ने कहा भाई ये बात आगे तक पहुँचाएंगे, तो कई बड़े अधिकारी के पास वाकदरा में पहुँचाई ये बात और उनका एक पत्र हमारे को बना के दिया, हमने उसका ज्ञापन और आग्रह पत्र कार्यालय में जाके दिया, और उसके बाद क्या मार्क भी करवाया, तो काम नहीं हुआ तो उसको फिर लेकर गए कि सर ये हमारा काम अभी तक नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ,
1: बिल्कुल
2: तो अब उन्होंने सरकार ने फिर एक्शन लिया चलो ये काम कुछ भी करके खोलना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद हमने फिर विचार किया खोली साइट और नामांकन जुड़े और सब किया और होने के बाद फिर भी कुछ अर्थ ना आ रही, फिर हमने फिर ज्ञापन दिया क्यों नहीं ये साइट गाँव गाँव में ई मित्र पे खुलती रहती है, बाकी अब जो है सदा खुली रहनी चाहिए,
1: बिल्कुल
2: क्यों नहीं ये पंचायत समिति स्तर पे एक साइट खुली रहे ताकि किसी लोगों का नाम
1: रह जाए तो वो जुड़ जाए।
2: तो इस प्रकार से फिर भी हमने अवगत कराया और उसके बाद जैसे पशु बीमारी आई लंपी वायरस वाली,
1: बिल्कुल
2: तो संगठन ने हमने मिलकर विचार किया ये बहुत घातक बीमारी है, अब पशु ही नहीं रहेगा तो अपन क्या रहेंगे,
1: बिल्कुल क्योंकि किसानों का और हम सबका
2: एक ही जुड़ाव है,
1: बिल्कुल पशु ही है, बिल्कुल
2: तो पशु के बिना हमने ये बेकार हो जाएगी, उसके लिए हमने संगठन ने और हमने मिलकर मतलब किसी किसी अपने आयुर्वेदिक की दवाई ढूंढाई, तो वो दवाई हमने फिर बना के फिर लड्डू बनाए उस दवाई के जैसे हल्दी और नीम के
1: जी जी
2: और इस प्रकार से मतलब ये लड्डू बना के फिर मार्केट में लेके गए उसको,
1: बिल्कुल
2: और हर पशु वालों को कह दिया भाई यहाँ पर हम आपको पशु की बीमारी के ये दे रहे हैं, तो सब लगे और कई पशु की जान बच गई इसमें।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वाग्धारा संस्था से जुड़ने के बाद आपने कई सारे कार्य किए हैं और अभी भी आप वाग्धारा संस्था से जुड़े हैं।
2: और भी हमारा अच्छा ही काम, और अभी अभी ये है कि हमने एक लक्ष्य लिया है कि प्राकृतिक घातक हो रही है।
1: बिल्कुल,
2: और एक विचार ये हो रहा है कि एक कुरीतियां समाज में
1: कई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल,
2: विशेष मतलब विदेशों से आके मतलब ये अपने गांव में जुड़ रही है, तो इसको अब निकालनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल,
2: तो अभी हमने एक युवा संगठन बनाया है, जैसे वाग्धारा है ही, इसके एवज में क्योंकि अब युवा संगठन अलग से बनाया हमने फिर।
1: बिल्कुल,
2: ताकि ये नशा मुक्त और पर्यावरण संबंधित और नाजात खर्चा,
1: बिल्कुल
2: ये निकालने के लिए हमने हमारे गांव से एक नया मॉडल दिया है, ताकि ये मॉडल हम पहले अपने यहाँ सुधरेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रसारण सब जगह
1: होगा। बिल्कुल,
2: ताकि देखा देख होगा ये।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने वाग्धारा संस्था से पहले दो और संस्था का जिक्र किया था, मैं जानना चाहूंगी कि वाग्धारा संस्था से जुड़कर आपको कैसा लगा और उन दोनों संस्थाओं से कैसे वाग्धारा संस्था अलग है।
2: देखो, दोनों संस्थाओं से तो वाग्धारा अच्छी यूं लगी क्योंकि उनका टारगेट है, जैसे कि 20 साल रहना है इस गांव में, ब्लॉक बनना है या 25 साल करना है।
1: बिल्कुल,
2: ये चलता था। अब वाग्धारा वो क्या, वो धरातल पे सदा है।
1: बिल्कुल,
2: वाग्धारा जो है वो सदा किसानों के प्रति जुड़ी हुई है, ताकि ये अब बीच में छूटने वाली
1: नहीं है। अभी के समय में आप क्या कर रहे हैं और आपके जीवन को आपने कैसे बदला और आपका अनुभव क्या कहता है अभी?
2: हमारा अनुभव और जीवन को तो इसी प्रकार से ये अभ्यास करते करते और एक दूसरे के प्रति मेरा परिवार गलत नहीं जाए।
1: बिल्कुल,
2: मेरा परिवार सुरक्षित रहे और मेरा समाज ये सदा रहे।
1: बिल्कुल,
2: और एक ये है कि जैसे पर्यावरण ये विशेष करके,
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि वृक्ष होंगे शुद्ध हवा मिलेगी, वृक्ष हो गए बरसात होगी।
1: बिल्कुल,
2: और गलत कई मार्केट बाजार में जाते तो अपना मुंह बांध के निकलना पड़ता है, ऐसी स्थिति है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसको क्यों नहीं सरकार एक्शन लेके इस पे मतलब कुछ अच्छा काम करे, कि वो जमीन फिजल पड़ी हुई है।
1: बिल्कुल,
2: और इसी गंदगी डालने पर वो पूरे गाँव में हो रहा है, तो ये कहीं कहीं ये हवा पहुँच रही है, तो ये क्यों नहीं सरकार इस पे लेके मतलब इसको अच्छा बना दे या इस पे वृक्ष लगा दे।
1: बिल्कुल,
2: वृक्ष लगा दे ताकि उसमें क्या पर्यावरण में जमीन तो पड़ी है वैसे भी, तो उसमें पर्यावरण भी शुद्धिकरण हो जाए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रकृति का संरक्षण जरूरी है, तो आप समाज के अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से?
2: अन्य लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये अपना पर्यावरण जैसे जीवन है, अपना वृक्ष है जीवन है, और जैसे पशु है वो अपने पीछे है, और विशेष करके ये नशा मुक्त, और बाकी क्या अगर इसके पीछे शिक्षा।
1: बिल्कुल,
2: शिक्षा महत्वपूर्ण जरूरी है। अब क्या छोटे छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं।
1: जी जी,
2: शिक्षा से वंचित रहने का कारण क्या है, किसी जगह कोई पहुंच नहीं पाता है, और हमने वाग्धारा के माध्यम से मतलब क्या अगर जो सरकार से वंचित लोगों को भी जोड़ने का काम किया हमने, और जो शिक्षा से वंचित है उनके लिए हमने वाग्धारा से फिर कह रहे हैं कि हम कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि माँ बाड़ी चल रही सरकार की योजना, तो क्यों नहीं उस बच्चे को ले जाके वहाँ जोड़े।
1: बिल्कुल,
2: और उसके आने जाने की समस्या है तो हम संगठन के द्वारा कुछ न कुछ करेंगे, ताकि वहाँ पर उस लोगों को बच्चों को छोड़ना नहीं चाह रहे, सबको साथ में लेके चले।
1: बिल्कुल,
2: अगर एक बच्चे को छोड़ दिया तो कल वो जाके 100 को बिगाड़ेगा।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आप और भी बदलाव समाज में लाना चाहते हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी मैम, धन्यवाद।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के हमारे जो अतिथि थे वो जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम जान पाए कि किस तरीके से उनके जीवन में पहले के समय का जो संघर्ष रहा, फिर उन्होंने किस तरीके से समाज को बदलने के लिए कई सारे प्रयास किए और अभी भी उनके जो प्रयास है वो जारी है कि वो किस तरीके से लोगों को जागरूक करें, खास करके वो चाहते हैं कि युवा जो है वो नशे से दूर रहे, क्योंकि एक युवा अगर नशे से जुड़ता है तो उसके साथ साथ कई सारे युवा उससे जुड़ जाते हैं और ये जो चीज है वो धीरे धीरे पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमानों से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, कॉम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा के निकट बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजनी पारेश्वर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: सेहत नो राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्कालिक में जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
2: साथियों, जहां सत्य हो हमारी पहचान, अहिंसा हो हमारा सम्मान, स्वच्छता सेवा और भाईचारे का संदेश फैलाएं, आओ बापू के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएं, कदम कदम पर हो इंसानियत का उजियारा, यही हो गांधी जी के सपनों का भारत हमारा।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम सबके गांधी में हमारा नारी प्रकरण चल रहा था, इसी बीच इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज के विशेष कार्यक्रम में हम बातचीत की शुरुआत करें तो श्रोता साथियों, इससे पता लगता है कि गांधी शील रक्षा के अंतिम साधन के रूप में मरने की तैयारी को मान्यता देते हैं। वे ऐसा भी मानते थे कि अत्याचार एक व्यक्ति द्वारा हो या अधिक द्वारा, तब भी स्त्री मरकर तो इज्जत बचा ही सकती है। ऐसी शक्ति साधने के लिए स्त्री या पुरुष को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, पर यदि उसमें ऐसी शक्ति न हो और यदि वह बलात्कार की शिकार बन जाए तो इसमें स्त्री उसे लेकर अपराधी नहीं समझनी चाहिए। समाज उसे हरगिज न दुत्कारे, बल्कि उस बलात्कार के कारण यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो उसके बालक के पालन पोषण की जिम्मेवारी भी समाज को वहन करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रश्न के साथ जुड़ा दूसरा प्रश्न स्त्री के अपहरण का है। कशिश, इसके अधिक से अधिक प्रसंग भारत विभाजन के समय देश के सरहदों के दोनों तरफ हुए। इस प्रसंग में मृदुला बहन साराबाई, कमला बहन पटेल और उनके साथियों ने जो साहस और वीरता दिखाई वह इतिहास में अमर रहेगी। इन बहनों ने भारत और पाकिस्तान में दूरस्थ भागों तक जाकर अपहृत महिलाएं कहा है उनको ढूंढ निकाला, उनमें से जो वापस देश में आने को तैयार हुई उनको वापस ले आई। जिन महिलाओं के परिजन मूल देश के मिले उनके साथ अपहृत बहनों का मेल मिलाप करवाया। जो परिजन उन बहनों को परिवार में फिर से लेने को तैयार थे उनको वहाँ बसा दिया। जिन बहनों को ऐसा आधार नहीं मिल पाया श्रोता साथियों, उनके लिए निर्वाह की दूसरी पर्याप्त व्यवस्था की गई। इन सेविकाओं की हिम्मत, व्यवहार, कुशलता, धैर्य और होशियारी देखकर कौन मुग्ध न हो जाए। उनके इस पराक्रम के पीछे गांधी जी की प्रेरणा काम करती थी। मृदुला बहन ने तो नुआखली में भी गांधी जी के साथ काम किया और बिहार में भी। वे अपनी मौलिक सोच से बहुत काम कर लेती थी, पर जब अवसर मिलता तब गांधी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने से नहीं चूकती थी।
1: जी बिल्कुल साथियों, गांधी जी की प्रेरणा से दूसरी भी अनेक बहनों ने भयंकर संकट की घड़ी में अत्यंत साहस के साथ दायित्व पूरा किया था। विभाजन के बाद गांधी जी ने डॉक्टर सुशीला को पंजाब में वहाँ के हिंदू निराश्रितों की छावनी में भेजा।
2: बिल्कुल।
1: पुरुष अधिकार भी जहाँ से भाग जाना चाहते थे, ऐसी छावनी में अंजलि जी पहले मैं मरूंगी फिर निराश्रितों को कुछ होगा, ऐसी कहते हुए डॉक्टर सुशीला ने आक्रामक दलों से गिरी छावनी के लोगों को फौरन भारतीय सीमा में सेना के सहयोग से पहुंचाने की व्यवस्था की थी।
2: जी बिल्कुल।
1: दोस्तों, बीबी अब्दुस्सलाम ने तो नोआखाली में गाँव में जाकर वहाँ से भयभीत होकर भागे हिंदुओं को अपने गांव में वापस लाकर बसाने का भी काम किया। नितांत दुबली पतली देह वाली बीबी अब्दुस्सलाम ने 25-25 दिनों तक उपवास रखते हुए हिंसा का आचरण करने वाले गुंडों से दूसरी कौम के लूटे हुए शस्त्र वापस दिलवाए थे। गांधी जी ने महिलाओं को सार्वजनिक आंदोलनों में स्वाभाविक रूप से सम्मिलित होकर उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व को एक नया रूप प्रदान किया था।
2: जी जी।
1: गांधी जी के स्वदेश लौटने से पहले सामान्यतः कोई महिला सार्वजनिक कार्यों में शामिल नहीं होती थी अंजलि जी। गांधी जी द्वारा सुझाए गए अहिंसक सत्याग्रहों में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुई और वह भी सहज स्वाभाविक रीति से।
2: बिल्कुल।
1: साथियों, इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों में स्त्रियां पुरुषों के समकक्ष श्रद्धा पाती थी। स्त्रियों ने सामान्यतः इस श्रद्धा को अपने आचरण द्वारा सत्य सिद्ध कर दिया।
2: बिल्कुल।
1: गांधी जी से पहले किसी नेता ने ऐसा नहीं किया था। विश्वविख्यात सेवा संस्था की संस्थापिका श्रीमती इला भट्ट कहती है कि गांधी जी ने ये ऐतिहासिक आगवानी नहीं की होती तो मेरे जैसी महिलाएं आज जहां तक पहुंची हैं वहां तक पहुंच ही न सकी होती।
2: बिल्कुल।
1: गांधी जी ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों को सम्मान युक्त नेतृत्व प्रदान किया है अंजलि जी।
2: बिल्कुल।
0: साथियों, इन बहनों में मिस मेडेलिन स्लेट जैसी साधिका भी थी। उन्होंने तो अपनी पूरी जवानी गांधी जी की सेवा में बिता दी। यह सेवा करते हुए उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की कशिश कि भारत विदेशी आक्रमण का अहिंसक प्रतिकार कैसे कर सकता है इसका अनुमान लगाने के लिए गांधी जी ने उनको भारत के पूर्वी सागर तट वाले गांवों में सर्वे करने के लिए भेजा था।
1: बिल्कुल।
0: उस काम को उन्होंने अच्छी तरह निभाया था। गांधी जी स्त्रियों के प्रति मनुष्य के रूप में आदर रखते थे, तभी तो वे स्त्रियों को पुरुष के समकक्ष कार्यकर्ता के रूप में देख सके। उन्होंने स्त्रियों में इतना विश्वास व्यक्त किया जितना उनसे पहले कि किसी नेता ने नहीं दर्शाया था। गांधी जी के इस विश्वास ने स्त्रियों में आत्मविश्वास विकसित किया। इसी से एक अमेरिकी निरीक्षिका ने लिखा कि आजादी के आंदोलन से पूर्व जहां स्त्रियां घूंघट रखती और घर से बाहर शायद ही नहीं निकलती थी, ऐसे गांव से अनगिनत स्त्रियों ने स्वेच्छा से कारावास झेला। गांधी जी को स्वराज के उपरांत न्याय एवं समता पर आधारित जैसा समाज निर्मित करना था, वैसा समाज सार्वजनिक कार्यों में स्त्रियों की स्वतंत्र भागीदारी के बिना संभव ही नहीं था। कशिश,
1: बिल्कुल
0: गांधी जी आत्मा की आवाज पर ऐसा कोई काम करने को तैयार नहीं थे, फिर उन्हें उसके पीछे की स्मृतियों का या शास्त्रों का कितना ही आधार क्यों न प्रस्तुत किया हो, तदनुसार किसी धर्म के आधार पर कोई बाल विवाह, विधवा पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आदि की बात करता तो वे मानने को तैयार नहीं होते।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी कार्यक्रम के माध्यम से नारी प्रकरण को लेकर बातचीत चल रही है, ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनवाते हैं साथियों को एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन में नारी प्रकरण की बातचीत की ओर। जैसा कि बातें गीत से पहले भी साथियों बहुत अच्छी चल रही थी और हम जान पाए थे दोस्तों कि गांधी जी द्वारा किसी धर्म के आधार पर कोई बाल विवाह, विधवा पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आदि की बात करता तो वे मानने को तैयार नहीं होते थे।
1: बिल्कुल
0: यही अंजलि जी, अगर आगे बात करें तो 1927 में गांधी जी ने श्रीमती शारदा बहन कोटक को एक पत्र लिखा था कि स्त्री और पुरुषों में एक ही आत्मा निवास करती है, उस पर जाति, लिंग या देश के अंतर का कोई असर नहीं पड़ता। एक वीरांगना की जागृत आत्मा एक दुष्ट मनुष्य की निद्रित आत्मा से कुछ बढ़ चढ़कर कहती है।
1: बिल्कुल,
0: स्त्री और पुरुष या ब्राह्मण और शूद्र की आत्मा में ही मूलतः कुछ फर्क होता है। ऐसा समझाते हुए समाज में ऊंच नीच के भेदों का पोषण करने वाले लोगों को गांधी जी का यह स्पष्ट जवाब था।
1: बिल्कुल
0: साथियों, एक पत्र लेखक ने गांधी जी से ये पूछा कि पति पत्नियों को क्यों मारते हैं। गांधी जी ने लिखा कि पुरुष को स्त्री को मारने का जरा भी अधिकार नहीं। पुरुष क्या पत्नियों की अपेक्षा कम अपराध करते हैं? यदि पत्नियां पतियों के हर अपराध पर उनको मारने लगे तो बहुत कम समय में कम पति जीवित रह पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: वैसे तो सामान्यतः गांधी जी संतति नियमन के साधन उपयोग में लेने के विरोधी थे। अंजलि जी, उन्होंने एक प्रसंग के पुरुष के दबाव के तले बार बार गर्भवती होकर शरीर निचोड़ देने वाली महिला को संतति नियमन के साधन काम में लेने की सलाह देते हुए महादेव भाई ने अपने डायरी में एक जगह लिखा है।
1: बिल्कुल कशिश, उन्होंने लिखा है कि पति का यह धर्म है कि उनकी पत्नी को सच्ची सहधर्मिणी, मददगार और अर्धांगिनी से कुछ विशेष माने, उसे उसके सुख दुख का भागीदार बनना चाहिए। पत्नी को कभी पति की गुलाम नहीं बनना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: वासना तुष्टि का साधन समझना चाहिए। पति अपने लिए जितनी स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है उतनी ही पत्नी को भी रखने का अधिकार है। जिस संस्कृति में स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता उसे शापित संस्कृति मानना चाहिए। पुरुष या स्त्री किसी के बिना संसार चल ही नहीं सकता, एक दूसरे के सहयोग से ही चल सकता है। यदि स्त्री का प्रकोप जाग उठे तो पुरुष को खत्म कर सकती है और इसी से उन्हें महाशक्ति माना जाता है।
0: जी हाँ,
1: इस प्रसंग में हम गांधी जी और कस्तूरबा के संबंधों के बारे में भी थोड़ा विचार कर लें। बहुधा ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने कस्तूरबा के साथ बहुत जुल्म किए थे, विशेष रूप से विदेशी लोगों को गांधी जी के प्रति यह शिकायत रही है। ऐसी मान्यता के पीछे एक कारण था गांधी जी की ईमानदारी और दूसरा कारण था ऐसा कहने वालों की समझ का अभाव। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ऐसे 2-3 प्रसंग ईमानदारी से उद्घृत किए हैं कि बाल्यावस्था में विवाह के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत पति होने का अधिकार आजमाया था। ऐसी बात भी उन्होंने आत्मकथा में लिखी है, पर उस पर टीकाकारों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। दक्षिणी अफ्रीका से वापस लौटते समय उनको मिलने वाले उपहारों को वे समाज की संपत्ति मानते थे, जबकि कस्तूरबा उनमें से थोड़ी चीजें अपनी भावी पुत्र वधुओं के लिए रखना चाहती थी। कस्तूरबा को समझाना कितना महंगा रहा इसका वर्णन गांधी जी ने किया है। इस प्रसंग में भी बहुत से गांधी जी की जबरदस्ती मानते हैं। तीसरा प्रसंग अस्पर्श कर्मचारी के पेशाब का पोट साफ करने से संबंधित कस्तूरबा की आनाकानी और गांधी जी के जबरदस्त आग्रह का है। इस प्रसंग में बेशक गांधी जी ने जबरदस्ती की थी, पर कस्तूरबा के वचन सुनकर वे तत्काल सावधान हो गए थे और उन्होंने माफी मांगी थी। बारडोली आश्रम में लिया गया गांधी जी और कस्तूरबा का फोटो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कस्तूरबा गांधी जी के पैर धोती है। इसे देखकर बहुत से मानते हैं कि गांधी जी कस्तूरबा को अपनी दासी समझते थे।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, गांधी जी के बारे में कोई धारणा बना लेने से पहले ये बात समझ लेनी चाहिए हमें कि गांधी जी एक सतत विकास करने वाले मनुष्य थे।
1: बिल्कुल,
0: अतः विवाह के समय

0: भी जैसे थे, उसकी बजाय बाद के दिनों में उनके विचार और आचार नितांत बदल गए। साथियों, ये कभी नहीं हमें भूलना चाहिए। फिर पतिपना आजमाने का प्रयास करते समय भी उन्होंने कस्तूरबा को अपनी दासी कभी नहीं माना था।
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा से ज्यादा झगड़ा होने पर दोनों मौन धारण कर लेते थे। यह तो दोनों का बराबरी जताने वाले आचरण थे। समझने जैसी बात तो ये है दोस्तों कि इन सभी प्रसंगों में प्रत्येक के पीछे गांधी जी का कोई ना कोई मान्य सिद्धांत था।
1: बिल्कुल,
0: इस सिद्धांत को समझने में जैसे ही उन्हें अपनी गलती नजर आई, वैसे ही उन्होंने गलती को सुधारा है। जैसे कि उदाहरण के लिए, पतिपने के पीछे पुरुष स्त्री की पारस्परिक वफादारी का विचार विकृत होकर काम करता था अंजलि जी। कस्तूरबा ने उसे स्वीकार नहीं किया तो गांधी जी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। पेशाब के पोट वाले प्रसंग में भी अस्पृश्यों को दूसरों से अलग नहीं माना गया। ये विचार तो दोस्तों काम करता ही था, पर वे कस्तूरबा को घर से बाहर निकाल देने तक गए। ये उनकी जबरदस्ती थी। कस्तूरबा ने जैसे ही उन्हें ये उल्हाना दी कि जरा तो शर्म करो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वैसे ही वे समझ गए और उन्होंने फौरन ही कस्तूरबा से माफी मांग ली थी। गहनों को समाज का अंग समझने के प्रसंग में गांधी जी ने पुत्रों को समझाकर अपने पक्ष में कर लिया था।
1: बिल्कुल,
0: उस समय उन्होंने अपना निर्णय स्थायी रखा। इसमें थोड़ा दबाव का तत्व अवश्य है। साथियों, इस तथ्य में जरूर सच्चाई है, यदि उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए गहने रख लिए होते तो कदाचित उन्हीं टीकाकारों ने गांधी जी को स्वार्थी कहा होता।
1: बिल्कुल साथियों, ढलती उम्र में जब गांधी जी घूम कर आते तब अपने पैर धुलवाते, लेकिन उस फोटो में जैसे हैं वैसे रोजाना पैर धोने के लिए कस्तूरबा नहीं होती। कभी कनु गांधी होता तो कभी ब्रज कृष्ण होता तो कभी मनु होता। वह समय ऐसा था कि गांधी जी की नन्ही नन्ही व्यक्ति की सेवा करने के लिए उनके अंतेवासियों में थोड़ी स्पर्धा सी चलती। बहुत संभव है कि उस दिन कस्तूरबा को जो अवसर मिला उनका उन्होंने आनंद लिया हो।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से नारी प्रकरण से जुड़ी ढेर सारी बातें आज कार्यक्रम में हम कर पाए हैं साथियों, अगले रविवार को हमारी फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकरण से जुड़ी और ढेर सारी बातों के साथ में। लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को।
0: नमस्कार साथी। दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार। थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतीनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

बागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, रोटी, कपड़ा और मकान, सबका समाधान भारत का संविधान।
1: जी हाँ, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान, सबका समाधान भारत का संविधान।

0: इस गीत के बाद साथियों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले रविवार इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रही थी संविधान और आदिवासी को लेकर। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना था आदिवासी अस्मिता का सवाल, इसी के साथ मुख्य धारा और मूल पहचान, साथ ही हमने जाना था संघर्ष के इतिहास के बारे में, इसी के साथ ब्रिटिश आदिवासी संघर्ष के बारे में जाना था और हम जान पाए थे संघर्ष के केंद्रीय बिंदु, यही जानेंगे भूमिजों का आंदोलन 1766 से 1800 तक के संदर्भ में।
1: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, इसी में हम आगे बात करें बंगाल के जंगल महाल, अब कुछ भाग पश्चिम में बंगाल और झारखंड में, के भूमिज आदिवासी किसानों, पाइको यानी कि सिपाहियों और सरदारों तथा कुछ जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव तथा विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1766 में जो आंदोलन प्रारंभ किया उसे चुवाड़ विद्रोह कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: अंग्रेज आदिवासियों के प्रति कितनी घृणा रखते थे इसका अंदाजा चुवाड़ विद्रोह जैसे नामकरण से ही पता चलता है। अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुवाड़ चुवाड़ यानी दुतार्थ और नीच कहते थे, इसलिए इनके विद्रोह को चुवाड़ विद्रोह कहा गया है।
0: बिल्कुल।
1: भूमिज लोग जंगल साफ कर खेती करते, पशु पक्षी का शिकार करते और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे।
0: जी हाँ।
1: अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी कि सिपाही का काम करते थे। वेतन के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी जो पाइकाना जमीन कहलाती थी। अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते हुए भूमिजों की पुश्तैनी जमीनें छीन छीन कर नए जमींदारों के हाथ बेचना और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई आबादी बसाना शुरू किया।
0: जी हाँ।
1: साथ ही पाइकों की जगह बाहर से पुलिस लाकर तैनात की, इससे हजारों पाइक जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन, कह सकते हैं कि सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। इन पाइकों और किसानों की संयुक्त शक्ति ने विद्रोह की वह लपट सुलगा दी जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बड़ा कठिन हो गया था।
0: जी हाँ।
1: इसके अलावा अंग्रेज शासकों ने बढ़ाए गए राजस्व को चुकाने में असमर्थ हो गए जमींदारों के हाथ से जमीन भी छीन ली। जमीन खो चुके जमींदारों में से कुछ इस विद्रोह में शामिल हुए। यह विद्रोह अकाल, लगान वृद्धि, जमीन की नीलामी और अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया।
0: बिल्कुल अंजलि। इसी के साथ रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह समेत अनेक लोग उस आंदोलन के अगुवा थे। साथ ही रघुनाथ महतो ने 1769 में नारा दिया अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह आंदोलन करीब 35 वर्ष तक चला। कंपनी सरकार ने समझ लिया कि पाइकों, किसानों और जमींदारों को कुछ सुविधाएं जैसे कि पाइकों को उनकी जमीनों की वापसी, राजस्व शेष रहने पर जमींदारों की जमीनों की नीलामी पर रोक, जमींदारों एवं घटवालों के पुलिस अधिकारों की पुनर्स्थापना किए बगैर इलाके में शांति संभव नहीं है। इसीलिए 6 मार्च 1800 को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया।
1: जी बिल्कुल। यही बात करे जागृति जी चेरो विद्रोह 1770 और 71 की, तो श्रोता साथियों वर्ष 1770 और 71 में वर्तमान झारखंड के पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे थे।
0: जी हाँ।
1: अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जिसे चेरो विद्रोह कहा जाता है। अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमक चेरो विद्रोहियों को हराने एवं पलामू पर कब्जा करने में सफल हुआ।
0: जी हाँ।
1: 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू के राजा चित्रजीत राय का दीवान जयनाथ सिंह एक भोक्ता सरदार था।
0: बिल्कुल।
1: अंग्रेज सीधे जयनाथ सिंह से ही बातचीत करते थे। 9 जनवरी 1771 को जयनाथ सिंह को पटना काउंसिल का पत्र उसके दूत गुलाम हुसैन खां के मार्तफ मिला जिससे उसे शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर देने का आदेश दिया गया था।
0: बिल्कुल।
1: जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने को तो तैयार था किंतु कुछ शर्तों के साथ। चूंकि कंपनी पलामू किला हथियाने पर आमादा थी इसलिए अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह द्वारा रखी गई शर्तों को अनुचित कहकर उसे मानने से इनकार कर दिया।
0: बिल्कुल।
1: लड़ाई छिड़ गई। भोक्ता और चेरो आदिवासियों ने साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया।

0: तो भुक्ता सरदार जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुंजा भाग गया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: समुदाय के लोगों ने एक बार फिर ज्यादा कर वसूली एवं पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 में भूकंत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। इसे दबाने में अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 में कंपनी सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया और 1814 में पलामू परगने की नीलामी की आड़ में अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हमने अभी जाना चेरो विद्रोह के बारे में, और चेरो विद्रोह 1770 से 71 के बीच में हुआ था। आगे जानेंगे तिलका आंदोलन के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि गीत से पहले चेरो विद्रोह के बारे में जाना था, यही जानते हैं तिलका आंदोलन के बारे में। तंजली आंदोलन 1783 में हुआ था। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में झारखंड यानी कि वर्तमान के राजमहल क्षेत्रों में संथालों का प्रवेश हुआ। संथाल आदिवासियों के राजमहल प्रवेश का पहाड़ी समुदाय ने विरोध किया। कुछ मुठभेड़ों के बाद संथाल इस क्षेत्र में बस गए।
1: जी जी,
0: संथाल पहाड़ों पर रहते थे और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नावें गंगा नदी से होकर गुजरती थी तब पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे तथा डाक ले जाने वालों की हत्या कर देते थे। वे गुरिला युद्ध यानी कि छापामार युद्ध करने में बड़े कुशल थे। इसी के साथ साथ ही वर्ष 1778 में अगस्टल क्लीवलेंट को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। उसने फूट डालने की नीति अपनाई और नियुक्ति के 9 महीने के भीतर 47 पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक बना लिया। इन सरदारों को कुछ सुविधाएं दी गई और अंग्रेज उनसे कोई कर नहीं लेते थे।
1: जी जी,
0: संथाल समुदाय के एक वीर सरदार तिलका मांझी ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि नीति एक समान होनी चाहिए। तिलका ने अंग्रेजों के समर्थक पहाड़िया सरदार जोराहा का विरोध किया और भागलपुर के पास वनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया।
1: जी बिल्कुल,
0: कहा जाता है साथियों कि तिलका और उनके साथी जब तक शाही खजानों व गोदामों को लूटकर गरीबों के बीच बांट देते थे, तिलका साल के पत्तों के माध्यम से घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित करते थे। उन्होंने वर्ष 1784 के आरंभ में अपने साथियों के साथ भागलपुर में डेरा डाल दिया। कहा जाता है कि 13 जनवरी 1784 के दिन तिलका ताड़ के एक पेड़ पर छुपकर बैठे हुए थे और उसी रास्ते से होकर गुजरते हुए घोड़े पर सवार क्लीवलैंड को उन्होंने तीर से मार गिराया था। इससे अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गई और तब अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकोट को भेजा गया था। आयरकोट ने पहाड़िया सरदार जोरहा के साथ मिलकर तिलका मांझी के समर्थकों पर हमला करने शुरू किए जिसमें अनेक लोग हताहत हुए, लेकिन तिलका मांझी बचकर भाग निकले और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपे। साथियों, आखिरकार

0: 1885 में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया और उन्हें बरगद के एक पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई।
1: जी बिल्कुल।
0: स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है।
1: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी तमाड़ विद्रोह की, तो श्रोता साथियों छोटा नागपुर के तमाड़ को केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में जो विद्रोह छेड़ा

0: आंदोलन करना शुरू कर दिया। हो लोगों की इन गतिविधियों के कारण पोर हार्ट राजा को फिर से रपसेज से सहायता की गुहार लगानी पड़ी।
1: जी बिल्कुल।
0: वर्ष 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। हो लोगों ने रिचर्ड का एक महीने तक सामना किया, किंतु अंततः विरोध को निरर्थक जानकर कंपनी से संधि करना बेहतर समझा।
1: जी जी।
0: संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थी। हो लोगों ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया। हो लोगों ने अपने राजा और जमींदारों को 8 आना यानी कि 50 पैसा प्रति हल सालाना कर देना स्वीकार किया।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि इस संधि के बावजूद कोल्हान में गड़बड़ी समाप्त नहीं हुई और 1831 और 32 में हो लोगों ने कोल विद्रोह में सक्रिय भाग लिया।
0: जी हाँ।
1: तो जागृति जी, इस तरीके से कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी श्रोता साथियों से आज बहुत अच्छी बातें रही है। संविधान और आदिवासी में हमने जाना भूमिजों का आंदोलन 1766 और 1800 के बारे में। इसी के साथ हमने जाना चेरू विद्रोह 1770 और 71 के बारे में। तिलका आंदोलन 1783 के बारे में हमने जाना। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1858 के बारे में जाना। हो संघर्ष 1820 और 21 के बारे में जाना।
0: जी हाँ।
1: अगले रविवार यह विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी फिर से मुलाकात होगी संविधान और आदिवासी संघर्ष के बारे में।
0: जी हाँ। साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: भाई ने बोलो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा धरकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई। कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर, एक नई स्वस्थ भारतीय व्यंजन विधि को लेकर। तो श्रोता साथियों, आज भी जैसा कि रविवार का दिन है, और आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियाँ। श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे दो व्यंजन विधियाँ रहने वाली है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो हम हमारे भविष्य को बेहतर कर पाएंगे, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर भी पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए कुछ नई नई स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियां लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। तो बातें ढेर सारी होंगी श्रोता साथियों हमारी आज कार्यक्रम में आपसे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों उसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन लिया जाए। जी बिल्कुल, तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब मुझे आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे कौन सी स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियाँ रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं स्वास्थ्य तरीके से पाव भाजी। साथियों, जैसा कि पाव भाजी तो हम सभी ने खाई है और वो देखते हैं कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी होती है, तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पाव भाजी तो बनाएंगे ही, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, यानी कि हेल्दी तरीके से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पाव भाजी बनाने की विधि के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम हेल्दी पाव भाजी बनाने की सामग्री को जान लेते हैं। तो श्रोता साथियों, आप पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, मैं आपको सामग्री बताने जा रही हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो साथियों, हमें चाहिए होंगे आलू, जो कि उबले हुए होने चाहिए, इसे आप दो ले सकते हैं मध्यम आकार के। गाजर भी इसमें चाहिए होगी, जो कि हमें कद्दूकस करनी होगी, ये भी हम एक ले सकते हैं, या फिर हम अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो हम इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ ही सब्जियों में आप फूलगोभी ले लें, जो कि कटी हुई होनी चाहिए। हम इसमें मटर का भी इस्तेमाल करेंगे साथियों, तो हमें मटर भी लेना है। शिमला मिर्च, जो कि कटी हुई होनी चाहिए। टमाटर का इस्तेमाल हम करेंगे, वो भी कटा हुआ हमें चाहिए होगा। श्रोता साथियों, आप इसमें प्याज ले लें, जो कि बहुत ही ज्यादा बारीक कटे हुए होने चाहिए। हरी मिर्च का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, वो भी बारीक कटी हुई हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसी के साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट आप बना ले साथियों पहले ही, क्योंकि अदरक और लहसुन के पेस्ट से इसमें स्वाद बेहतर आएगा। इसके बाद ही हल्दी पाउडर आप इसमें लेंगे, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हम करेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। इसी के साथ ही तेल का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, जो कि हम आवश्यकता अनुसार लेंगे। साथ ही यहाँ पर हरा धनिया आप ले लें, जो कि बारीक कटा हुआ होना चाहिए। नींबू का रस यहाँ पर चाहिए होगा स्वाद को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ ही पाव भी चाहिए होंगे, जो हम मात्रा के अनुसार लेंगे। अगर हम थोड़ी ही पाव भाजी बना रहे हैं तो हम इसमें 6 से 8 ब्रेड ले लेंगे पाव के, या फिर हम इसमें ओट्स पाव भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन पाव भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें साथियों, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो ये तो सामग्री मैंने आपको बता दी है साथियों कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। मैं सामग्री पुनः दोहराना चाहूंगी साथियों, क्योंकि अगर कुछ रह गया हो तो आप उसे फिर से लिख सकते हैं। जैसे कि हमें आलू चाहिए होंगे उबले हुए, गाजर कद्दूकस की हुई, फूलगोभी हमें कटी हुई चाहिए होगी, मटर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई चाहिए होंगी, टमाटर भी हमें यहाँ पर कटे हुए चाहिए होंगे, प्याज जो कि बारीक कटे हुए होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हरी मिर्च का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट हम पहले से ही बना लेंगे, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा, लाल मिर्च पाउडर लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे, गरम मसाला पाउडर लेंगे, और अगर पाव भाजी मसाला भी आप लेंगे श्रोता साथियों, तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। साथ ही नमक का इस्तेमाल आप इसमें स्वाद अनुसार करने वाले हैं। तेल हम लेंगे, नींबू का रस हमें चाहिए होगा, साथ ही आवश्यकता अनुसार पाव भी हम लेंगे। तो दोस्तों, ये तो हम सामग्री जान पाए, अब यही अगर इसे बनाने की विधि के बारे में जाने तो शुरू करते हैं साथियों पाव भाजी बनाने की विधि। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें सारी सब्जियों को मिलाकर उबालना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें आलू, गाजर, फूल गोभी और मटर को पानी में उबाल लेना है। अब श्रोता साथियों, जब सब्जियां उबल जाएं तो उन्हें हमें कद्दूकस कर लेना है, यानी कि मेश कर लेना है और एक तरफ रख देना है। इसके बाद में प्याज, टमाटर और मसाले हमें तैयार करने हैं साथियों, जिसमें हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसे गर्म करेंगे। अब उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर तक भूनेंगे साथियों। अब श्रोता साथियों, प्याज जो है वो हम देखेंगे कि हल्का सुनहरा हो गया है, तो सुनहरा होने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट उसमें डालकर कुछ सेकेंड के लिए और भूनेंगे। अब साथियों, जो हमने सब्जियां उबाली थी, जो मेश कर रखी थी, उन सब्जियों को हमें इसमें मिला लेना है। अब इसमें टमाटर डालकर हम इसे पकने देंगे। टमाटर अच्छे से पक जाए श्रोता साथियों, तो उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाए श्रोता साथियों, तो हम इसमें उबली हुई सब्जियां डालकर इसे मिक्स करेंगे। अब श्रोता साथियों, सब्जियों को अच्छे से मिला लें आप, और फिर थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही रहने दें। फिर थोड़ी देर बाद पानी डालकर उसे और मिक्स करें, ताकि भाजी नरम और गीली हो जाए साथियों। अब 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकने दें।
ताकि सभी मसाले और सब्जियां अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएं। अब श्रोता साथियों, जब तक हमारी भाजी बनकर तैयार हो रही है तब तक हम करेंगे क्या, सर्व करने की तैयारी करेंगे। यानी कि हमें पाव को तवा पर हल्का सा सेंक लेना है, उसे हल्का सा घी लगाकर गर्म करना है साथियों। अब जैसे ही अगर भाजी तैयार हो जाती है तो हमें हरा धनिया और नींबू का रस उसमें डालकर उसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब श्रोता साथियों, जैसा कि पाव और भाजी दोनों बनकर तैयार है तो अब हमें पाव के साथ गर्मा गर्म भाजी परोसनी है। साथ में हम इसमें नींबू और प्याज की कटी हुई रिंग्स भी डालकर इसके स्वाद को और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप हेल्दी पाव भाजी को ताजे दही या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं साथियों। ये स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे कार्यक्रम में स्वादिष्ट पाव भाजी बनकर तैयार हो गई। आगे भी एक और ऐसे स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि को लेकर मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसे कि साथियों, गीत से पहले एक बहुत ही स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। हमने जाना था कि हम घर पर किस प्रकार से आसान तरीके से हेल्दी पाव भाजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि वो रेसिपी तो मेरी आपसे पूरी हो चुकी थी, अब यही जानते हैं साथियों एक और नई व्यंजन विधि के बारे में। साथियों, अब हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। साथियों, चने की दाल तो आप सभी ने देखी ही होगी, क्योंकि अक्सर हम दाल में चने की दाल का भी चुनाव करते हैं, जो कि स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद भी होती है। तो ऐसे में साथियों, आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। इसकी अगर सामग्री के बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको चने की दाल लेनी है 1 कप, घी की आवश्यकता होगी जो कि आपको 2 से 3 चम्मच लेना है, गुड़ आपको लेना है 1/2 कप, पानी का आप इसमें इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार करने वाले हैं, काजू बादाम कटे हुए होने चाहिए, इलायची पाउडर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे जो कि हम 1/4 चम्मच लेंगे। तो दोस्तों, ये तो सामग्री रही, फिर से सामग्री पुनः दोहराना चाहूंगी। तो साथियों, आप लिख लीजिएगा कि हमें चने की दाल चाहिए होगी, घी चाहिए होगा, गुड़ चाहिए होगा क्योंकि हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, काजू बादाम हमें इसमें लेने हैं, इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी हम इसमें करेंगे हलवे का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये तो सामग्री रही, अब बनाने की व्यंजन विधि को जानते हैं। तो सबसे पहले श्रोता साथियों, आपको चने की दाल को अच्छे से धोकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेना है। फिर चने की दाल जो आपने भिगो कर रखी है, उस दाल को मिक्सी में पीस लेना है। साथियों, अब एक कढ़ाई में घी गरम करना है, पीसी हुई दाल जो है उसे डालकर उसमें भूनना है, फिर धीरे धीरे पानी डालकर पकने देना है साथियों, और फिर आपको गुड़ डालना है। साथियों, जब दाल पूरी तरह पक जाए और जो गुड़ आपने डाला है वो मिलकर हलवे जैसा बन जाए, तो हम उसमें काजू बादाम जो हमने लिए थे वो डाल देंगे बारीक कटे हुए, और हम इसमें अब ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं साथियों कि हमारा गर्मा गर्म चने की दाल का हलवा बनकर तैयार है। हम चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं साथियों, क्योंकि पिस्ता भी एक तरह की सूखा मेवा होता है जो कि सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, आप घर पर चने की दाल का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो श्रोता साथियों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रम में 2 व्यंजन विधियां। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी पाव भाजी बनाने की रेसिपी के बारे में बताया था, और अभी हमने जाना कि हम चने की दाल का हलवा कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि ये दोनों व्यंजन विधियां आपको जरूर पसंद आई होंगी, और आप भी अपने घर पर इन्हें बनाकर इनका सेवन कर सेहतमंद रहेंगे। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है, और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और गीत।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, ये मुलाकात हमारी आपसे फिर होंगी अगले रविवार को कुछ नई स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन विधियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ श्रोता साथियों, नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़े ने थी सके
2: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवो आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़े ने आपड़े में देखाए तो आपड़े ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़े ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित